जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: अच्छा मुझे सच सच बताओ कि आप वॉलेट घर पर रहने पर ज्यादा पैनिक होते हैं या फिर फोन भूलने पर ज्यादा पैनिक होते हैं? देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फोन अगर घर पर रह जाए तो ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि भाई फोन ही आजकल हमारा मिनी बैंक बन चुका है, राइट? एंड कतर ने डिजिटल कन्वीनियंस को एक और लेवल अप कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि अब हिमियन कार्ड होल्डर्स एप्पल पे के थ्रू एटीएम से कैश विदड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकेंगे। मतलब फिजिकल कार्ड भूल गए, नो वरीज, अगर एटीएम इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो सिर्फ अपने आईफोन या एप्पल वॉलेट के जरिए काम हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? ये सिर्फ कन्वीनियंस की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट और सिक्योरिटी की भी स्टोरी है। एंड ये हम कैशलेस सोसाइटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कैश की जरूरत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले एटीएम तक कार्ड ले जाना पड़ता था, अब एटीएम तक फोन ले जाना पड़ेगा। That's getting even more convenient day by day. देखिए कतर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन quietly लेकिन confidently बिल्कुल evolve होते जा रहा है। मेट्रो से payments, मोबाइल wallets और अब कार्ड के बिना ATM withdrawal, क्या बात है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ जुड़े रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Energy. Iskaba la buscaba la sacaba la bala. Burga, burga. La fiesta la burga. Energy burga.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप.
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको.
2: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद
1: यार,
2: आता है
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 5555 6189.
1: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
0: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
1: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
2: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
4: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाना मिल्क लबान योगर्ट। एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स, रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून।
5: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
7: Call 5501-7739.
6: Gifting partner Al Mufta Group.

0: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
1: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
2: मिर्ची, it's hot.

0: रबी शर्गिल की आवाज में ये गाना फ्रॉम जब तक है जहां राइट इन ऑन मिर्ची, और मेरे ख्याल से ये मौसम के झपेटे में मैं भी आ ही गई। देखो ये समर सीजन में ऐसा एक बार तो होता ही है कि आप बीमार पड़ते हो, क्योंकि यार बॉडी को ये जो सडन शॉक्स हो जाते हैं कि आप एकदम ठंड में हो, एसी में हो, सडनली फिर आप बाहर जाते हो और इतनी सारी गर्मी होती है, तो ये जो शॉक है बॉडी बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। एंड देन वो सर्दी, बुखार, बीमार, ये सारा चीज़ें एक बार तो आपको ये गर्मी के टाइम पर हो ही जाती है। कई बार कोई कहता है कि लू लग जाती है, ऐसे कुछ फिलहाल मेरा हाल हुआ है। सो वेल, आज का वेदर क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: 43 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम। राइट नाउ जो महसूस कर रहे हैं आप वो 34 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी थोड़ी थोड़ी हर रोज अब बढ़ती जाएगी, फिर भी हालांकि ये 41% पर है। ऑल इन ऑल वेदर ऐसे ही है, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नरम इन द सेंस, यार ह्यूमिडिटी अब बस गले लगा ही रही है आपको।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
0: सोना महापात्र की आवाज में ये गाना रविंद्र उपाध्याय का साथ तलाश मूवी से। Enjoy this track, Mike से दिल तक आफरीन के साथ on Mirchi Hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

स्वर्णिका और श्रेया घोषाल की आवाज में खूबसूरत सा गाना राइट योर ऑन मिर्ची साथ देते हुए आपका और देखिए अब तक तो हम जान ही गए हैं कि हमारे कतर में सूख वाकिफ में हम्बा यानी मैंगो फेस्टिवल चल तो रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन ये एक बात शायद सभी को नहीं पता होगी कि यहाँ पर फैमिलीज अलाउड है और यहाँ पर बैचलर्स को वो अंदर जाने दे नहीं रहे हैं। और ये बात मुझे कल ही पता चली है जब मेरे डैडी जाने की कोशिश कर रहे थे। सो माई डैडी वेन एवर ही कम्स टू कतर ही कैन नॉट सिट पीसफुली फॉर वन सिंगल डे, वो हर रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो कल उन्होंने सोचा चलिए मैंगो फेस्टिवल पर चक्कर लगा लेते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ विजिट नहीं कर पाए बिकॉज वो अकेले थे। सो वेल, अगर आप अकेले जाने का प्लान कर रहे हो तो फिर दोबारा सोच लीजिए, शायद नहीं अलाउ करेंगे। और जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है कि कौन से दिन हैं या कौन से वक्त है जहाँ पर बैचलर्स अलाउ किए जाएंगे तो हम यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। वैसे आपने अभी तक चक्कर लगाया कि नहीं मैंगो फेस्टिवल में? भाई बहुत सारे किस्म के मैंगो की डेलिकेसीज जो है वो आपको खाने मिलने वाली है। और कैसा है ना कि ऐसी चीज़ें जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं की होगी, जैसे मैंगो कुनाफा है और फिर मैंगो चाट है और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। सो वेल विद दिस मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mix. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Yeah. Oh yes, it's Mirchi Helpline. Tell me.
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
2: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

So, देखिए अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें 2026 की, तो अब वो फेज आ गया है जहां हर गोल सिर्फ गोल नहीं, क्वालिफिकेशन का एक शॉर्टकट भी बन सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है जरा नजर डालते हैं। देखिए फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में जगह पक्की कर ली है। काइलेन एम्बापे ने 2 गोल्स दागकर फिर से दुनिया को याद दिला दिया है कि बड़ा स्टेज और एम्बापे का रिश्ता कितना खास है। अर्जेंटीना ने भी ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया है, और मेसी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और आज नजरें होंगी जॉर्डन और अल्जीरिया के मुकाबले पर, जहां क्वालिफिकेशन की रेस और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हर ग्रुप में अब कैलकुलेटर निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि सिर्फ जीत ही नहीं गोल डिफरेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ मेसी, एम्बापे और हालैंड यही हेडलाइंस नहीं बना रहे हैं, छोटी टीम्स भी बड़े सपने देख रही है। केप वर्डे, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे नाम फुटबॉल की दुनिया को सरप्राइज मोड पे रखे हुए हैं। सो देखते हैं आगे आगे चलकर कोई ऐसा डार्क हॉर्स है जो आगे हमें सरप्राइज करने वाला है, और अगर ऐसा कोई लगता है कि आपको ये कोई टीम है जो बहुत ही ज़्यादा हमें इस बार शॉक दे रही है, तो वो कौन सी है? 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट्स कनेक्ट हियर। मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burka, burka. La vieta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: बेटा अब घर आजा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए बोल कौन रहे हो?
3: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते हैं बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा तो बेटे क्या होगा हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
2: हैं। मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा नहीं ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
3: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटा। हेलो
2: अंकल आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल मेरे बात कर, मैं अगर आप तू आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, अरे जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटा।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में बंगाली गाने का थोड़ा सा तड़का यहाँ पर लगते हुए चलते हैं किसी और जगह की तरफ। और आज बात करने वाली हूँ मैं अगले नए गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले इस सिंगर और इस सिंगर की एक सर्टेन पैटर्न है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट संजू राठौड़। अब जो मुंबई से बिलोंग करते हो, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते, दे नो हिम वेरी वेल। मराठी पॉप स्टार है ये, और एक से एक मराठी गाने ये आजकल जेंजी से रिलेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिलेनियल्स भी इन्हें पसंद कर रहे हैं। और इनका गाने का जो स्टाइल है, ये जो पैटर्न है, जो मैंने अब देखा है कि भाई इनको अगर सक्सेस मिल रही है तो औरतों की वजह से। और वो क्यों? क्योंकि इनके हर गाने में ये इतनी तारीफ करते हैं औरतों की, कभी उनकी साड़ी की, तो कभी उनके बैंगल्स की, तो कभी उनके काजल की, लेकिन एवरी सॉन्ग हैड टू हैव सम और दी अदर तारीफ़।

0: नहीं नहीं ये गाने में भी याद है आपको,
1: एक नंबर तुझे कमर है चाल शेकी शेकी है कितनी सुंदर तुझा डिंपल जे पाइजे देगी देगी।
0: सो वेल जिन्हें मराठी नहीं समझ में आती है वो यही कह रहे हैं कि भाई कितने प्यारे तुम्हारे डिंपल, कितनी प्यारी तुम्हारी कमर। और अगला गाना नया गाना है संजू राठौर की आवाज में, मराठी सॉन्ग राइट यू प्लेइंग फॉर यू बैंगल्स। अब ये चूड़ियों की तारीफ कर रहे हैं, तो एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लाल लाल

0: रिची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा

0: वेल कुनाल गांजावाला की आवाज में ये गाना राइट योर ऑन मिर्ची साथ जुड़ गई है आपके साथ आफरीन। लेकिन वक्त हो चला है कि हम गेम खेलें, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा कहता है कि 7:40 हो रहे हैं।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन को 89.6 मिर्ची वन। और देखिए दोस्तों, वक्त हो चला है कि हम वो बॉलीवुड का गेम खेले जो अक्सर हम इसी वक्त पर खेलते हैं। लेकिन आज का जो डायलॉग है ना, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर डायलॉग, लेकिन ये मूवी काफी पॉपुलर रही है और उसमें से एक सीन चुरा कर मैं यहाँ पर आपको सुनाने वाली हूँ। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सीन सुनो।
2: Lights, camera, scene test. Scene test.
3: दोस्त है मेरी। क्यों?
4: तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे इस पार्टी में नहीं लाना चाहिए था?
3: नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता।
4: दूरी को प्रॉब्लम हो सकती है।
3: दूरी को?
4: नैना ने हमें सब बता दिया।
3: क्या बताया है?
4: दूरी तुम्हारे कमरे में गई थी। अब बनो मत, हमें सब पता है।
3: मॉम, नूरी तो
4: बहुत ही इज्जतदार फैमिली से है, जैसे कि तुम। What?
3: What's so funny, huh?
0: एक वो टाइम था 90s में जो जब मैं वो हम आपके कौन और ये सारी मूवीज देखती थी ऑन लूप, और बाद में फिर 2000 के एरा में ये एक मूवी है जो मैं ऑन लूप बहुत बार देख चुकी हूँ और इसके बाद में भी शायद और 10-15 बार देखने वाली हूँ। 5000186 इज माई नंबर। फटाफट से यहाँ पर आकर बताइए कि आखिर ये कौन सी मूवी से डायलॉग चल रहा है। अब्दुल रज़ाक का यहाँ पर मैसेज ऑलरेडी आ चुका है जो बिल्कुल सही है। तब तक के लिए चलिए, फोन भी आने लग गए हैं यहाँ पर, मैं फोन उठा लेती हूँ। तब तक के लिए आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा मधुबंती वाक्ची की आवाज में ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
2: Hi.
3: How are you feeling right now?
2: The Josh is high. I am excited a lot.
3: How's the feeling?
2: The feeling is immense. I cannot tell you in words कैसा feel हो रहा है. बहुत बहुत खुशी हो रही है. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने talented थे. मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: Well, Karan Sembi की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना Right Here on Mirchi. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था, जो कहती हूँ मैं गेम जिसका नाम है लाइट्स कैमरा सी टेस्ट. और बहुत सारे यहाँ पर आंसर्स आए हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी तो एक मौका दे दें आंसर करने का. सो सीन सुना रही हूँ और आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी से ये सीन सुना रही है. ठीक है, सो हियर इट गोज.
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
1: वेल, मेरा सीन कहाँ चला गया आज. वंस अगेन, ये बहुत ही पॉपुलर मूवी का. आई गॉट इट, हियर इट इज. ध्यान से सुनो.
2: दोस्त है मेरी.
3: क्यों, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे इस पार्टी में नहीं लाना चाहिए था?
2: नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता.
3: दूरी को प्रॉब्लम हो सकती है.
2: दूरी को?
3: नैना ने हमें सब बता दिया.
2: क्या बताया?
3: दूरी तुम्हारे कमरे में गई थी. अब बनो मत, हमें सब पता है.
2: नूरी तो
3: बहुत ही इज्जतदार फैमिली से है, जैसे कि तुम.
1: ऑलराइट, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. एंड लेट मी टेल यू यार, मैंने ये मूवी कितनी बार ही देखी है. और ये मूवी का हर एक किरदार इज माय फेवरेट. आई जस्ट कांट सेलेक्ट एनी वन फेवरेट ऑफ दिस इन दिस एंटायर मूवी. कौन सी मूवी है ये? बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं राइट नाउ. शारिक ने वॉइस मैसेज भेजा है. शारिक ये वॉइस मैसेज यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई एम श्योर ये सही होगा. और फिर यहाँ त्रिशा का मैसेज आया है, फामा का मैसेज आया है, मोहम्मद खान ये दिस इज़ नॉट ये जवानी है दीवानी, ये कोई और मूवी है. मोहम्मद अमर का मैसेज आया है, अब्दुल रज़ाक का मैसेज आया है, और सभी का यही कहना है कि ये जो है दिस इज दिल धड़कने दो. यस, अनिल कपूर, शिफाली शाह, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, व्हाट अ स्टार कास्ट यार, फरहान अख्तर. और इस मूवी में जितने भी साइड कैरेक्टर्स में थे वो सब एक से बढ़कर एक थे यार. मूवी हो तो ऐसी, मतलब अगर आप मल्टी स्टारर मूवी बना रहे हो ना तो इस तरह की होनी चाहिए, जहाँ पर हर एक किरदार का एक अपने आप में वजन है, जिनके बगैर मूवी कम्प्लीट नहीं हो सकती है. Like वो मूवीज जो आपको कंफ्यूज ही कर देती है ना. सुकृति कक्कड़ और सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक. माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: बंजारे का ये गाना बैरान राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:03 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अरिजीत सिंह और अकाशा की आवाज में ये अगला गाना ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

तो देखिए, अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें 2026 की, तो अब वो फेज आ गया है जहां हर गोल सिर्फ गोल नहीं, क्वालिफिकेशन का एक शॉर्टकट भी बन सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है जरा नजर डालते हैं। देखिए, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में जगह पक्की कर ली है। काइलेन एम्बापे ने 2 गोल्स दागकर फिर से दुनिया को दिला दिया है कि बड़ा स्टेज और एम्बापे का रिश्ता कितना खास है। अर्जेंटीना ने भी ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया है, और मेसी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और आज नजरें होंगी जॉर्डन और अल्जीरिया के मुकाबले पर, जहां क्वालिफिकेशन की रेस और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हर ग्रुप में अब कैलकुलेटर निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि सिर्फ जीत ही नहीं, गोल डिफरेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ मेसी, एम्बापे और हालैंड यही हेडलाइंस नहीं बना रहे हैं, छोटी टीम्स भी बड़े सपने देख रही है। केप वर्डे, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे नाम फुटबॉल की दुनिया को सरप्राइज मोड पे रखे हुए हैं। सो देखते हैं आगे आगे चलकर कोई ऐसा डार्क हॉर्स है जो आगे हमें सरप्राइज करने वाला है, और अगर ऐसा कोई लगता है कि आपको ये कोई टीम है जो बहुत ही ज़्यादा हमें इस बार शॉक दे रही है, तो वो कौन सी है? 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट्स कनेक्ट हियर। मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। It's hot.

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

मधुबंती बागची और सुमन तो मुखर्जी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। चलिए जरा इम्पोर्टेंट बातें की तरफ चलते हैं, यानी एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं। आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.93, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीस 76.71, बांग्लादेशी ढाका की बात करें तो 33.80 पर है, श्रीलंकन रुपीस 91.60 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.45। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: और जब भी ये गाना बजता है अरिजीत सिंह की आवाज में, मुझे बस ये लगता है कि बैग पैक करूं और कहीं तो बस चल पड़ूं, बिल्कुल रणबीर कपूर की तरह। वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जहाँ पर वेकेशन की बात हो ही रही है, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की पैकिंग चल रही होगी। आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों के प्लान होते हैं इस वक्त पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने होम टाउन जाने का या फिर कहीं पर वेकेशंस पर जाने का। वेकेशंस पर जाने की एक बात ये होती है कि आप 15 दिन 10 दिन इस तरह से जाते हो, लेकिन जब आप अपने घर जाते हो तो 1-1.5 महीने की अच्छी खासी लंबी छुट्टियों पर जाते हो और यहाँ की गर्मी से आप बच जाते हो। वेल, टॉकिंग अबाउट वेकेशंस, मैं भी जाऊंगी, अभी नहीं, टाइम है थोड़ा, लेकिन यस, तैयारियां करना चाहिए हम सभी को भी। विल दिस टाइम हो रहा है कि भाई हम बॉलीवुड का गेम खेलें, और आज ना मैंने सोचा कि बस कुछ अलग हो जाए जिंदगी में, थोड़ा चेंज ना हमेशा होना चाहिए। तो आज का गेम कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक आवाज़ सुनाने वाली हूँ, एक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हुए और बॉलीवुड से जुड़े हुए एक शख्सियत की आवाज़ है। आपने गैस करना है कि आफरीन आखिर किसकी आवाज़ ये सुना रही है। यू हैव टू टेल मी द इंसान्स नेम, ठीक है? हियर इट गोज।
2: बहुत शांत व्यक्ति हो गया हम पहले ना, पता नहीं क्यों, इन दिनों कुछ दिनों से हुआ है कि मुझे बोलने से ज्यादा मौन रहना अच्छा लगता है। इन दिनों हुआ है, पहले मैं उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति था, मुझे प्रश्न चाहिए थे, आप प्रश्न दो, मैं उत्तर बहुत है मेरे पास, मैं हर चीज पर राय रखता था। अब मेरी जेन्युइनली ऐसा हुआ है कि मेरे भीतर अब
1: All right, बताइए किसकी आवाज थी ये। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर और आप कुछ दिन तक हम यही गेम खेलेंगे। थोड़ा सा गेम में चेंजेस आने चाहिए कि नहीं, है ना? सो बताइए किसकी आवाज

ये थी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। चार्ली, जाहिद, मोहम्मद यूसुफ खान और सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपके भी जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए असीस कौर और स्टेविन बहन की आवाज में अगला गाना कमिंग योर वे ऑन नशे। माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ बने रहेगा। इट्स हॉट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: अर्ज किया है
2: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: हमारी एंट्री हो ही गई है, यानी मैं जवाब लेकर आई हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हाँ जी, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था और आज मैंने सोचा यार जिंदगी में कुछ नया अच्छा लगता है ना, तो बस कुछ गेम है जिस तरह से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के मैंने अलग अलग तरीके से पेश किया है, जहाँ मैं बॉलीवुड से जुड़े हुए एक किरदार की आवाज़, आई मीन इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, एनीवन, ओके। तो आपने ये आवाज़ पहचानी है कि ये किसकी आवाज़ है, ठीक है? हियर इट गोज।
2: बहुत शांत व्यक्ति हो गया हम पहले ना, पता नहीं क्यों, इन दिनों कुछ दिनों से हुआ है कि मुझे बोलने से ज्यादा मौन रहना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, और इनके एक्शंस यानी इनकी एक्टिंग स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स, दैट्स व्हाट ही इज। अब ये कौन है ये मैं थोड़ी ना बताऊंगी, तो आप ही बताओगे ना। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग आफ्रीन।
1: गुड मॉर्निंग,
3: जस्ट नाउ वी अपडेट वन ऑडियो क्लिप एंड
1: हां जी,
3: टू नेम द पर्सन हु वाज देयर इन द ऑडियो क्लिप, इज इट
1: पंकज त्रिपाठी। और यही मैसेज यहाँ पर इम्पा ने किया है, खयाम ने किया है, सुंटी ने किया है, ताहिर का मैसेज है, अहमद मोहम्मद का मैसेज है, हु इज दिस अगेन अहमद, और फिर ये कौन है, मोहम्मद यूसुफ खान, यस चार्ली जाहिद एंड सो मेनी मोर। सो पंकज त्रिपाठी इट इज, और जहाँ पंकज त्रिपाठी की बात हो रही है तो बता दूं भाई, जहाँ इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कह सकते हैं बतौर फार्मर, मतलब बहुत ही गांव से ये बिलोंग करते हैं, बेलसान बिहार गांव से है, फार्मिंग करते थे, उसके बाद में एक होटल में शेफ भी करते थे क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, देन ही जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाज। और भाई वो जो कहते हैं ना, हीरा है वो कहीं ना कहीं से चमक के आता ही है, तो बस दैट्स हाउ ही इज अ हीरा ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। चलिए पंकज त्रिपाठी की बातें हो गई है तो अगले गाने की तरफ चले, ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में कॉकटेल 2 का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:04 की तरफ। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। एक पुराने गाने का नया वर्जन सुना है तो फिर से सुन लीजिए, 90s का ये गाना लेकिन नए तड़के के साथ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Energy.
1: Busca bala, busca bala, saca bala.
2: Gra bala.
1: Burga, burga. Na vie bala, burga.
2: Energy, burga.
3: Alô? Alô?
4: Ah, vad fan är
3: det?
4: Ah, vad kommer att hända? Ah, vad kommer att
3: hända? Hallå, kommer att hända? बोल रहा है भाई।
4: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
3: भाई
4: भाई
3: भाई
4: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अब मुझसे कह रहा
3: बता दो
4: अबे
3: भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा
4: है क्या बात है। नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
3: अबे भाई कौन लताशा?
4: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
3: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
4: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
3: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
4: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
3: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा? अबे तो सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
4: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
3: फोन तूने करा, तूने
4: मैंने क्या फोन मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
3: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई?
4: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
3: तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने अस्वाद दिया, टेंशन अलग दे दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज, तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: जूलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाएं और भी खास. स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइन, डार्जलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. न्यू ब्रांच ओपनिंग सून एट सफारी मॉल अबू हामूर. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जेनरेशंस.
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाना मिल्क लबान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतर लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
7: Call 5501-7739.
6: Gifting partner Al Mufta.

देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा जोरों शोरों से भागना और प्रोग्रेस की तरफ दौड़ लगाना। कभी कभार थोड़ा सा पॉज लेकर थमना भी बहुत जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को, और आज की खबर ये है कि देखिए, कतर रेल ने अनाउंस किया है कि लुसेल ट्राम सर्विसेज 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक टेम्परली सस्पेंड रहेंगी, क्योंकि नेटवर्क पर मेजर इम्प्रूवमेंट वर्क्स होने वाले हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट बस सर्विस लेकतफिया स्टेशन से तरफात साउथ स्टेशन तक चलेगी, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, ताकि कम्यूटर्स की जर्नी ना बिल्कुल स्मूथ रहे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो लिंक सर्विसेज, इंक्लूडिंग नया मेट्रो लिंक रूट IM154, आई रिपीट, इट्स M154, ये भी एरिया सारी कवर करेंगे। सो बस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतने दिन तक रुकने वाली है और फिर हमारा कम्यूट कैसा होगा, प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आपके जानने वाला कोई ट्राम यूज़ कर रहा है तो उन्हें बताइए, भाई सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। वो कहता है ना, प्रोग्रेस की रेल जो है कभी कभी प्लेटफॉर्म पर रुकती जरूर है, लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा बेटर फ्यूचर ही होता है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: में
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
2: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे film के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
1: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
3: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हर्षद सक्सेना की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइटर ऑन मिर्ची। और आफरीन ने आज इतनी खूबसूरत लाइनें सुनी है, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं आपसे शेयर ना करूं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमां तक पहुंचने के बाद। क्या बात है। इसी खूबसूरत ख्याल के बाद अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अमी विर्क और शाहिद मलिया की आवाज में ऑन मिर्ची साथ।

0: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
1: Hi.
2: How are you feeling right now?
1: The Josh is high. I am excited a lot.
2: The feeling
1: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: दर्शन रावल, असीस कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और जुड़ गई है मेरे साथ अंशु। हाँ जी अंशु,
1: क्या हालचाल आफरीन?
0: हाल तो बहुत बुरे हैं, जैसे तुम देख रही हो, मास्क लगा रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा है कि भाई ये वो टाइम है कतर का जहाँ पर हम ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, मतलब इतना एसी और इसमें आते हैं, तो शायद उस वजह से
1: एब्सोल्युटली ट्रांजिशन का फेस है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाफरीन जो है पूरी तरह से इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड दिख रही है। सो इससे ज्यादा कि मैं इस वक्त कुछ कहूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम डेफिनेटली जो रेस्ट करो आप,
0: बिल्कुल।
1: एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में से जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा ध्यान रखें यार, खासकर इस बात का कि सडन टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना आपकी लाइफ में इस वक्त ना हो। एज एन एकदम ठंड, अगर आप एसी वाले एक्सपोजर से हैं तो इमिजिएटली आप एकदम बहुत ज्यादा गर्मी में ना जाए। सडन धूप में अगर आप बाय चांस चल के आ रहे हैं तो इंस्टेंटली एसी में ना जाए। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार जो ध्यान रखनी होती है, गर्मी से जब आप एकदम तुरंत धूप से आते हैं ना, माना कि बहुत जोर की प्यास लगती है, तुरंत पानी ना पिए, गिव इट अ ब्रेक ऑफ अराउंड 5 मिनट्स, लेट योर बॉडी सेटल डाउन एंड देन ओनली कंज्यूम सम वाटर व्हेन यू फील लाइक।
0: बंदी बिल्कुल सही कह रही है, और ठंडा पानी तो बिल्कुल ही ना पिए, कि वो गर्मी के बाद ऐसा रहता है कि ठंडे ठंडे पानी से बिल्कुल ही ना पिए। मैं तो ऐसा ही भी नहीं पीती हूँ, हमेशा गर्म पानी लेके बैठी रहती हूँ, फिर भी चलो ठीक है। आई थिंक सो ये पूरे गर्मी के सीजन में एक बार कोई ऐसा बीमार हो ही जाता है।
1: हाँ, वो ऐसा वो वायरल इन्फेक्शन का सीजन चल ही रहा है, लेकिन आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, यही उम्मीद है। इसके साथ आफरीन,
0: यस, टाटा बाय बाय, सायोनारा,
1: काम शुरू करती हूं।
0: हाँ जी, एक बारी आ गई है आपकी अंशु, ये लीजिए उसके आपके लिए गाना भी।

0: व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, 90s की इंस्टेंट याद जो है ना, जब आप ये गाने सुनते हैं तो आपको आ ही जाती है. मतलब क्या दौर, क्या गाने. एंड साथ ही हम जो है इन गानों से कितना ज़्यादा रिलेट किया करते थे, याद है आपको. वैसे मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:06.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: यार बात इतनी है ना कि जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है ना, तब आपको सही मायने में समझ में आता है कि उसकी वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस है. तो है क्या? Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही हम बात कर रहे थे 90s के कुछ खास गानों की, या उस दौर की, उस एरा की. यार पता है क्या, लाइफ का वो फेज जो है ना, काफी कमाल हुआ करता था. मुझे आज भी याद है कि अगर अपना कोई बहुत ज्यादा फेवरेट गाना सुनना है तो म्यूजिक चैनल में जो टॉप 10 ट्रैक्स आते थे ना, आप बेसब्र होकर वेट किया करते थे कि शायद उन गानों की लिस्ट में, उन ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट में आपका गाना जो है वो आ ही जाए. या तो फिर उस म्यूजिक चैनल में हम दिन भर इंतजार किया करते थे कि जब अलग अलग गाने आ रहे हैं तो शायद मेरा गाना एक ना एक बार तो आ ही जाएगा. लेकिन उस समय जितना क्रेज हमें गाने सुनने का था ना, उससे ज्यादा क्रेज हुआ करता था उसकी वीडियोस का, डिपिक्ट उसे किस तरह से किया गया है. एंड वी यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड. आज के दौर को अगर देखने की कोशिश करें तो भाई, कैसेट और सीडी के जमाने से या टेलीविजन स्क्रीन में अपने गाने के इंतजार के जमाने से इतना अलग है ये जमाना, क्योंकि सारी की सारी चीजें फिंगर टिप्स पे हैं. आपको अगर कोई खास गाना सुनना है, भैया एलेक्सा को बोल दो, AI एप्स को बोल दो, कार में बैठे बैठे वो गाना जो है जब दिल करे एक क्लिक में आप उसे प्ले कर दो. अगर वीडियोस की बात करें तो कई दफा तो हमें पता भी नहीं होता है कि इस गाने का पिक्चराइजेशन है तो है कैसा, क्योंकि हमारा पूरा इंटरेस्ट अगर किसी बात पे रह गया तो वो फीजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी पे, कि ये गाना सुनाई देने में काफी अच्छा है, बस ये गाना जो है ना हम सुन ले. लेकिन वो दौर था जब हम गानों को ना सिर्फ सुना करते थे बल्कि महसूस किया करते थे, एक्सपीरियंस किया करते थे विद डिफरेंट वेज ऑफ adopting and accepting that particular track. चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी. अगर गानों के सुनने या देखने के एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है, आज की डेट में जो फिजिबिलिटी वो आपको ज्यादा पसंद है कि जब चाहे जो गाना सुनना है फटाफट सुन लिया, या वो बेसब्री का दौर 90s का दौर आपको ज्यादा पसंद है जब खासकर कैसेट में गाने लगाए हम, या तो फिर अपने गाने का वेट करें, विजुअल एक्सपीरियंस लें, विच अकॉर्डिंग टू यू वॉज मोर बेटर? 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. साथ मुझे ये भी बताना कि 90s का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है. अगर कोई गाना पॉपुलर डिमांड पे रहा तो मैं जरूर अगला गाना आपके लिए प्ले करूंगी. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़ यानी अगला गाना, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

लकी अली की खूबसूरत सी आवाज़ और एक बार फिर से कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करने का मौका मैंने आपको दिया। लेकिन चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर इस वक्त हम कहीं पहुंचने वाले हैं तो वो है आज का मोमेंट यानी कि प्रेजेंट। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड सीधा इस वक्त मेरा दिमाग मुझे कहीं लेकर जाता है तो वो है कल की ओर। भाई साहब, आज जो है ना कहानी फुटबॉल की नहीं, आज की कहानी है माइंडसेट की एंड साथ ही ग्रेटनेस की। वेल, कल का मैच जितने लोगों ने देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना वर्सेज ऑस्ट्रिया, ये बात आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि मीडिया जो है आंखें टिकाए इस बात की खबर फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी दैट लियोनेल मेसी मिस्ड अ पेनल्टी। और जैसे ही दुनिया को सबसे बड़े प्लेयर्स की कोई गलती नजर आती है, भैया तैयार हो जाते हैं लोग क्रिटिसिज्म के लिए, मीम्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए। लेकिन फ़र्क यही होता है कि एक अच्छा प्लेयर और एक अच्छा इंसान किस तरह से अपनी एक भूल को दुनिया की नज़रों में पूरी तरह से जीत में बदलने की कोशिश कर दे। क्योंकि कुछ लोग पेनल्टी के बारे में सोचते हैं कि जो उसे हमने मिस कर दिया, एंड कुछ लोग अपने अगले मिनट्स के बारे में किस तरह से हिस्ट्री लिखी जाए वो यही सोचते हैं। यार, मैंने ना मेसी का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उनसे पूछा गया था कि जब आप कोई गोल मिस करते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है तो राइट आफ्टर दैट आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल चलते हैं। और मेसी ने बहुत खूबसूरत तरह से एक बात कही थी कि दुनिया में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट एथलीट होते हैं और दूसरे होते हैं परफेक्शनिस्ट। एब्सोल्यूट एथलीट वो होता है जिसके दिमाग में पिक्चर बड़ी क्लियर होती है कि अगर उसे खेलना है तो खुद के लिए खेलना है, उसे दुनिया से जुदा इस बात के लिए खेलना है कि कोई और क्या कहेगा और बस ये सोचना है कि जो हुआ वो हुआ, अब मुझे अगला खुद के लिए क्या करना है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होता है उसके दिमाग में ये चलता है कि भाई मैंने तो गलती कर दी लेकिन अब जो है दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, मुझे अपनी मिस्टेक को किसी ना किसी तरह से कवर अप करना है ताकि लोग जो है मेरे बारे में खराब एंड गलत बोलना जो है वो शुरू ना कर दें। एंड ये दोनों प्लेयर्स के बीच में ना एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है लेकिन यही डिफाइन करता है कि आखिरकार कौन गोट है और कौन सही मायने में अपने माइंड को कंट्रोल कर गेम में मौजूद है। एंड कल फाइनली मेसी ने वो कर दिखाया। पेनल्टी मिस हुई लेकिन उसके बाद सर जो है वो झुका नहीं, कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा नहीं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदली नहीं, एंड उसके बाद गोल, फिर एक और गोल, एंड उसके साथ फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल बनाने वाले 18 गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप मैचेस अगर कोई बने नए रिकॉर्ड के साथ, नई हिस्ट्री के साथ, तो वो है लियोनेल मेसी। भाई साहब, एक ही बात कहूंगी, प्रेशर में दो ही चीज होती है, या तो कोई एथलीट हमेशा के लिए खत्म होता है या तो एक एथलीट दुनिया के लिए गोट बन जाता है। Having said that, सुरु निगम की खूबसूरत सी आवाज़ यानी अगला गाना साहिल की डिमांड पर मैं आपके बीच पेश करना चाहूंगी। बहुत ही प्यारा सा गाना है, सुने एंड एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: Anji.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए. हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है.
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे हैं भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका आप.
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको.
3: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
3: सर. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता
2: है कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एक बात बताना, आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले अपने सेल फोन पे कौन सा एप्लीकेशन खोला?
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे चांसेस हैं शायद व्हाट्सएप। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वैसे आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के लगभग 3 बिलियन से ज्यादा लोग हर सुबह बस वही करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वक्त व्हाट्सएप की कमान जो है एक इंडियन के हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मेटा ने भारत के कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड अपॉइंट कर ही लिया है। और इनकी कहानी जो है ये काफी दिलचस्प है। कुणाल शाह, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। अरे ना, ना ही कोई फैंसी कॉलेज डिग्री, ना ही कोई पुश्तैनी जायदाद। उसके बाद इस बंदे ने अपने काम से, अपने हुनर से कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इसका नाम जो है हमेशा के लिए अंकित हो ही चुका है। पहले फ्री चार्ज बनाया, फिर क्रेड, एंड आज के डेट में व्हाट्सएप का ग्लोबल हिट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिरकार जुकरबर्ग ने कुणाल शाह को ही क्यों चुना? देखिए, व्हाट्सएप जो है ना, अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप के तौर पे नहीं रह गया। मेटा का विजन है कि व्हाट्सएप को कल को पेमेंट्स, एआई असिस्टेंट्स और बिजनेस इकोसिस्टम का पावर हाउस बनाना है। और अगर दुनिया में कोई मार्केट इन तीनों चीजों को सबसे अच्छी तरह से समझता है तो वो है इंडिया। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर पिछले कई सालों से एग्जैक्टली इसी स्पेस में प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहा है, पेमेंट्स को समझ रहा है, टेक्नोलॉजी को स्केल कर रहा है, तो वो है कुणाल शाह। एंड बस इसी के चलते आज जो है कुणाल शाह के नाम के आगे अगर कोई नाम जुड़ चुका है तो वो है मेटा। भाई, ग्लोबल बनने के लिए दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ता, इतना अच्छा काम करो कि दुनिया खुद आप तक पहुंचे। कुणाल शाह की कहानी यही बयां करती। स्टेडियम टू मर्जी, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100/100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: सिंह की खूबसूरत सी आवाज सुकृति कक्कड़ का साथ एंड व्हाट अ सुपर पावर पैक ट्रैक इट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म पठान, ये तो मैंने आपको सुना दिया। लेकिन सुपर पावर पैक तरह से इसने जो हमारी जिंदगी में एंट्री मारी है उसकी खबर लगी या ना लगी?
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विथ यू। एक बार फिर से स्पाइस के साथ मिठास दोनों अगर आपको कहीं मिलेगी अंशु के अलावा तो वो सीधा उस जगह का नाम है सुक वाकिफ एंड दैट टू उसका ईस्टर्न स्क्वायर जहां पे इस वक्त होस्ट किया जा रहा है हमवा एग्जीबिशन यानी कि द इंडियन मैंगो एग्जीबिशन इन एसोसिएशन विथ द एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर। बिल्कुल ठीक सुना आपने भाई साहब, क्या कमाल का एक्सपीरियंस रहा इस बार हमवा एग्जीबिशन देखने के बाद। सच कह रही हूं, अब तक के हर एक एडिशन को मैं जरूर विजिट क्यों, लेकिन इस बार का जो एडिशन है अब तक का सबसे बड़ा एडिशन। अगर भारतीय आमों की बात करें, उनकी सबसे ज्यादा वैरायटीज की बात करें तो इस एडिशन में आपको जरूर देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर वन। इसके अलावा 20% दूसरी वैरायटी की भी फ्रूट्स हैं जो इंडिया के काफी प्रोमिनेंट फ्रूट्स हैं जो यहां पर हमको रेयरली खाने को या देखने को मिलते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। फिर मैं जामुन की बात करूं, लीची की बात करूं, जैक फ्रूट की बात करूं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये दो चीजें तो है। लेकिन भाई घर के बने हुए आम के आचार और एक नहीं ना जाने उनकी कितनी वैरायटी, आम मीठे आचार की बात करें, खट्टे अचार की बात करें, मिक्स्ड वैरायटीज ऑफ अचार की बात करें, आपको ये सारी की सारी चीजें अगर कहीं मिलेंगी ना तो वो है हम्बा एग्जीबिशन में। लेकिन मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कुछ रहा ना तो वो है कच्चे आम का पानी, वो भी पानी पूरी के लिए। इट वॉज सो डिलिशियस। मैंगो कुनाफा तो मैंने ट्राई किया, कच्चे आम की भेल भी मैंने ट्राई की, मैंगो डोसा भी मैंने ट्राई किया, इसके अलावा मैंगो भाई ढोकला भी है। मतलब हर जगह आम जो है ना खास एक्सपीरियंस देने के लिए अगर कहीं तैयार है तो वो है मैंगो एग्जीबिशन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ यार। ये आम का सीजन जो है ना हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है एंड अभी तो बहार आई हुई है पूरी, सो जाओ। 27th of June इज गोइंग टू बी द लास्ट डे एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर गोना मिस इट टेरिबली, सो बिफोर मिस करो फटाफट से जाके अटेंड करके आओ। एंड सबसे खास बात, जहां पर ये इवेंट होस्ट किया जा रहा है ना, इट इज फुल्ली एयर कंडीशन। अगर आपके दिमाग में ये परसेप्शन है कि ओपन एरिया में ये मैंगो एग्जीबिशन होस्ट हो रहा है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। एसी में चिलचिलाती हुई ठंड के साथ जैकेट लेके जाना बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आम के साथ खास एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हो जाओ। विशाल मिश्रा की आवाज, फिल्म का नाम स्त्री, सचिन जुगर की कॉम्पोजिशन, ये अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 2000, what a beautiful, lovely track it is. इस वक्त ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, दीदार ना सही, अपनी आवाज के जरिए मैं आप तक पहुंच चुकी हूँ। लेकिन हाँ, इस वक्त किसी फिल्म का दीदार मैं आपको जरूर करा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का लाते हुए एक बार फिर से कोई तो ऐसी फिल्म है जिसने ब्लॉकबस्टर हिट के अलावा बहुत सारे दूसरे टाइटल्स भी अपने अड्डे में कर ही लिए थे, उसकी कोई दास्तां आपके बीच पेश करने वाली हूँ। बिलीव में अगर आप बॉलीवुड लवर हैं, आपको फिल्में देखना काफी पसंद है, तो इतना समझ जाएं ये फिल्म एक ना एक बार आपने अपनी जिंदगी में जरूर देखी होगी। अब ये कौन सी है, सारी की सारी बातें मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे? तो फटाफट से इस फिल्म का एक कॉन्वर्सेशन मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, बस मुझे जल्दी से ये बताना है ये फिल्म है तो है कौन सी, एंड साथ ही ये डायलॉग अगर किसी ने कहा है तो वो शख्सियत कौन है। करेक्ट आंसर कहा, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896 पे विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। बट अभी फिलहाल जल्दी से एक काम कर दें, आपके लिए ये जो खूबसूरत सा डायलॉग है, बातचीत है, वो पेश करने की कोशिश करें। वैसे सच कहूं यार, ये हीरो जो है ना बड़ा हॉट है, एंड कतर अभी अभी आके भी गए।
2: मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहा जो मेरी आंखों में है, और आज मुझे वो प्यार दिखाई दिया है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं। तुम पागल हो अंजलि, तुमने सिर्फ उसी से प्यार किया है।
0: चलिए एक बार फिर से प्ले कर दें, किसी का मैसेज आया एक बार और प्ले कर दीजिए। ये लीजिए जी।
2: मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहा जो मेरी आंखों में है, और आज मुझे वो प्यार दिखाई दिया है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं। तुम पागल हो अंजलि, तुमने सिर्फ उसी से प्यार किया है। जब से तुमने प्यार को समझा है,
0: और हमने सिर्फ तुमसे प्यार किया है जब से हमने प्यार को समझा है। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस की ये फिल्म है तो है कौन सी। मीनवाइल कविता सेठ की आवाज, नीरज श्रीधर का साथ है, ये अगला गाना वर्जन 2 ऑफ दिस आइकॉनिक ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: Well, विशाल शेखर की पावर पैक कॉम्पोजिशन केके की आवाज शान का साधन, क्या बेहतरीन गाना यार। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 12th ग्रेड में अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैंने अपने पियर्स के साथ मिलकर बस इसी गाने में परफॉर्म किया था। एंड भाई क्या तालियों की धूम बजी, ये बात होता है। वैसे अगर हम तालियों और सीटियों की बात करें तो ये बात होता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद जब जब इसे पर्दे पे देखा गया तो भैया हर एक ऑडियंस का यू नो वो व्यूअर्स का पूरा वो पैमाना है ना तालियों और साथ ही सीटियों पर ही नापा गया था। कौन सी फिल्म है यार? बस वही फिल्म जिसका कुछ देर पहले मैंने आपके बीच एक डायलॉग एक कॉन्वर्सेशन पेश किया एंड आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये शख्सियत है तो है कौन एंड साथ ही ये अगर डायलॉग आया तो किस फिल्म में आया। नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, मैं जल्दी से एक बार फिर से सुनाती हूँ। अगर आपको लगे कि आपने सुनते सुनते ही पहचान लिया तो मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर भेजना 5000186 पर 5000186 पर। विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो। Okay.
1: मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाह जो मेरी आंखों में है और आज मुझे वो प्यार दिखाई दिया है लेकिन वो मेरे लिए नहीं। तुम पागल हो अंजलि, तुमने सिर्फ उसी से प्यार किया है। जब से तुमने प्यार को समझा है।
0: हाय हाय, ये एक तरफा प्यार की ताकत, जरा देखें ये कौन है।
2: Hi, Anshu. This is Salman Khan and Kajol, and the movie name is Kuch Kuch Hota Hai.
3: Hello, Raja Mirchi. Anshu, how are you? My name Ali Wajdad. This movie, Kuch Kuch Hota Hai, Salman Khan and Kajol.
0: Absolutely, आप दोनों ने जो कहा ये पूरी तरह से सही है। इसके अलावा जितने लोगों ने भी लिखकर जवाब दिया, इस्माइल, यूसुफ, प्रमोद, पूजा, चित्रा एंड सो मेनी मोर, थैंक यू सो वेरी मच यार। इस क्वेश्चन के जवाब की बात करें तो 1998 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जो अपने आप में एक लव स्टोरी नहीं बल्कि इमोशंस की पूरी किताब है, मैं यही कहूंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ कुछ होता है। पर शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी एंड सलमान खान, यार ऐसे सितारों से सजी इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस को जीता नहीं बल्कि लाखों दिलों में अपनी जगह भी बना ली। लेकिन यार आज ना मैं राहुल, अंजलि या टीना की बात नहीं करूंगी यार, मैं बात करूंगी अमन मेहरा की। सलमान खान का वो कैरेक्टर जो फिल्म में शायद सबसे कम समय के लिए था लेकिन सबसे गहरी बात कह गया। यार देखो, अमन जो है अंजलि से प्यार करता था, उसे शादी करने वाला था, लेकिन जब उसने अंजलि की आंखों में राहुल के लिए प्यार देखा तो उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, ना ही कोई बदला लिया, उसने बस एक कदम पीछे ले लिया। एंड मुझे लगता है कि शायद यही जो है ना उस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। यार हम ना अक्सर प्यार की इस फीलिंग को पाने से जोड़ देते हैं लेकिन अमन ने सिखाया कि कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसकी खुशी को अपना समझना होता है। और जिंदगी में हर कहानी हमारे हिसाब से तो लिखी नहीं जाती, तो फिर चाहे आपका काम हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बेहद पसंद है, अगर आपको लगता है कि सही मायने में वो आपकी मंजिल में नहीं है तो रास्ते से हट कर खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करना और ये मान लेना कि कुछ ना कुछ बेहतर तो हमारे लिए ज़रूर बना है एंड उसकी खोज के साथ, तलाश के साथ पूरी कोशिश में लग जाना, शायद यही जिंदगी का नाम है। क्या कहती पब्लिक? बाद में अगर एकदम है तो एक थैंक यू मैसेज तो भेज दो 5000186 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस फिल्म का जिक्र हो, इसका टाइटल ट्रैक हम ना सुने ना यार, ये तो नहीं हो सकता। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन।
12: इट्स हॉट।

0: Well, Jubin Nautiyal की खूबसूरत सी आवाज and what a lovely track it is. इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपकी सेहत जो है हमेशा प्यारी और अच्छी रहे उसका इंतजाम भी मैं जरा कर दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mithi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, अगर आज की हेल्थ टिप की मैं बात करूँ तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बिलीव मी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यार हम ना रोज जिम ना जाने का गिल्ट फील करते हैं, कभी गिल्ट फील करते हैं कि हमने डाइट ना फॉलो किया, लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हम दिन भर कितनी देर तक बैठे रहते हैं. ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका सेडेंट्री वर्क है, चाहे आप एक कार ड्राइवर हैं, चाहे आपका ऑफिस वर्क है. यार ऑफिस की चेयर हो, कार हो, सोफा हो, फोन हो, लैपटॉप हो, यार कभी आपने नोटिस किया है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि नॉनस्टॉप हम 3 से 4 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे रह जाते हैं और बॉडी जो है ना इस चलते साइलेंटली सफर करती है और हमें पता भी नहीं चलता. बैक पेन, नेक स्टिफनेस, लो एनर्जी, हैवी लेग्स, पुअर पॉस्चर, मतलब लगता है ये सब क्यों हो रहा है. भाई साहब अगर छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो यही होना है. और इसका सोल्यूशन जो है ना ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हर 45 मिनट्स में, कम नहीं ज्यादा नहीं, 2 मिनट्स के लिए आप उठ जाओ, थोड़ा सा वॉक कर लो, शोल्डर रोटेट कर लो, नेक स्ट्रेच कर लो, या बस खड़े होकर डीप ब्रीदिंग कर लो. यार बॉडी को जिम से पहले ना मूवमेंट चाहिए. और याद रखना, हेल्थ सिर्फ वो नहीं जो हम आपके खाने की प्लेट में देखते हैं, हेल्थ वो भी है कि हम अपनी बॉडी को दिन भर में कितना मूव करने देते हैं. तो भाई आज जो है आप एक काम ज़रूर करोगे, आप चाहे किसी भी चेयर में बैठे रहो, कुर्सी जो है ना छोड़ूंगा नहीं ये वाली टेंडेंसी से बाहर निकल कर चलते फिरते 2-2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हुए हर 45 मिनट में आपने उठना है. ऑलराइट, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, दर्शन रावल की आवाज जॉनिता गांधी का साथ यानी अगला गाना सुनाते हैं. ये मत कर दियो कि कस्टमर गाड़ी में बैठा है 2 मिनट के लिए उठना है छोड़ के, बीच रास्ते में उसे छोड़ दी. एंजॉय.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची ये थॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: The feeling
5: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: Well, Arijit Singh ki khubsurat si awaaz Akasa ka saath, and what a power pack track it is.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Bhai sahab, agar nachne gaane ki baat kare, waise ye gaana to tha film Cocktail 2 se. Lekin kisi ko nachana hai na is waqt to case bada aasan hai. Agar koi ye kahe ki nahi yaar mujhe nachna bilkul bhi nahi aata. In fact, mere ghutnon mein jo hai wo kafi dard hai. To bhi main aapko ek aisa trick batati hu jiske chalte acche acche ke nach jo hai na is waqt nikal kar zarur bahar aayenge. इस तपती चलचलाती हुई गर्मी में बिना चप्पल के इंसान को दो मिनट बाहर खड़ा करके तो दिखाओ एंड इंश्योर करो कि आसपास अंदर आने का बस रास्ता ना हो. हाय, नाचना किसे कहते हैं, उस इंसान को और आपको दोनों को बड़ी अच्छी तरह से पता चलेगा. भाई साहब, गर्मी का कुछ ऐसा कहर हमारी जिंदगी में इस वक्त छाया हुआ है कि इसकी दास्तां बयां करें तो कैसे ही करें. अगर आज के टेम्परेचर को देखने की कोशिश करें तो मान लो आंकड़ा जो है आपकी उम्र से ज्यादा पार हो चुका है. ना तापमान सलमान कह रहे हैं.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
3: Weather update.
0: Well, today's maximum is going to be somewhere around 46. लेकिन मेरी गाड़ी जो है ये 50 से कम दिखाती नहीं है. उम्र नहीं, टेम्परेचर की बात करूं. And minimum is around 35. अपने आप को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, जितना हो सके इलेक्ट्रोलाइट्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें. बाकी कलेजन दिमाग के ठंडक के लिए मैं हूं ना, टिक्के बने रहें, सुनते रहें कदर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. It's hot. Enjoy. बिंदी का नाम अंशु. And weather update is brought to you by
3: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future, call now 3100-0813.

0: यार एक बात बताना कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद रहती है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार नेशनल सी बात है, किसी भी जगह को अगर हम देखने जाएं तो भाई वहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, ये सब तो याद रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी जगह में हमें खासकर वार्मथ या हॉस्पिटैलिटी महसूस हो तो वो जगह और भी ज़्यादा याद रह जाती है। एंड शायद इसीलिए कतर जो है दुनिया में काफ़ी अलग है और इसी एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से आ चुका है कतर टूरिज्म अवार्ड्स 2026। देखिए इस साल और भी ज्यादा कैटेगरीज ऐड की गई हैं ताकि टूरिज्म इकोसिस्टम के हर हीरो को रिकॉग्निशन मिल सके, चाहे वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अट्रैक्शंस, इवेंट्स, डिजिटल क्रिएटर्स या सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। वेल, कतर टूरिज्म ने कैटेगरीज को एक्सपैंड किया है एंड अगर इसकी लिस्ट को आपको देखना है तो बिल्कुल आप qatartourism.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोज के चलते लोगों ने कतर को बेटर एक्सप्लोर किया है तो एक बात खास कर ध्यान रखिएगा, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर ये कैटेगरी भी इस साल इंट्रोड्यूस की गई। बढ़िया जी, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 16th of September तक आपके पास वक्त है कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें qatartourism.com पे जाकर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ भाई अच्छी अच्छी एंट्रीज जो है वो शामिल करके आओ। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्रीज का टेस्ट कराना है कि वो वाकई इस काबिल है या नहीं कि उसे पुरस्कार मिल सके, तो मुझे बुलाओ, रेस्टोरेंट का खाना भी चखेंगे, मुफ्त में आपके यू नो सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे एंड साथ ही आपके वीडियोज में अपनी झलक भी पेश कर ही देंगे। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय। This happens to be one of my most favorite tracks from the film Pardes. Kana pasand aaye to ek thank you message zarur bhejna 5000 1896. Enjoy.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga. Hallå? Hallå?
2: Ja, vad fan är det?
1: Vad
2: är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det?
1: Vad
2: bol raha hai bhai ab mujhe aap bataya usne ki tum bhi yaar tum ek number ka item meri bhai bhai mujhe aap bataya asal main wahan gaya hua tha ha
1: hello
2: अबे तो मुझसे कह रहा
1: बता तो दे भाई
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन नताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन नताशा मैं तो नताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने हंसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: What a beautiful track in दोनों की उस magical आवाज में. फिल्म का नाम हसी तो फसी है. What a lovely track it is. इस गाने को सुनकर कोई हंसे मुस्कुराए ना तो फिर क्या ही करे.
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mithi and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. एंड साथ ही कोई तो खास बात है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी. यार कभी कभी ना लाइफ हमें एग्जैक्टली वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, लेकिन अक्सर वो देती है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते. अगर आपको लगता है कि आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, अगर लग रहा है कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो कम मिल रहे हैं, खैर इन दैट केस बस एक बात याद रखना कि बीज जो है ना जमी के अंदर काफ़ी वक्त तक छुप के रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो वही बीज एक मजबूत दरख्त बनकर सबके सामने बस उभर ही आता है. तो बीज की वो उगने तक की जो दूरी होती है, देरी होती है, या जो उसका सफ़र होता है ना उसमें काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो उगने लगे, ऊपर आने लगे, तो वो जर्नी जो है लोगों के सामने काफ़ी आसान लगती है. तो बस यही समझना कि कुछ तो है जो अंदर छुपा है, उसे बाहर आने में अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन जब एक बार बाहर आ गया तो ज़िंदगी जो है मुकम्मल लगने लगी. वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से दोस्ती कर लेते हैं. अंधेरों से घबरा कर नहीं, उनमें भी रोशनी ढूंढ लेते हैं. वक्त जरूर लगता है ख्वाबों को हकीकत बनने में, मगर जो रुकते नहीं वो एक दिन कहानी बन ही जाते हैं. बात में हदम तो एक थैंक यू मैसेज फटाफट से भेजो 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

पे। ऑलराइट, खुशियां तो आपकी जिंदगी में हम भी लेकर आए जाते हैं, लेकिन आई पे जो है अच्छे एक्सचेंज रेट्स के चलते इस वक्त खुशियां जो है वो दुगनी करने में कहीं कोई कमी ना छोड़ रहा है। जरा देखिए आई पी मनी में आज क्या ही हालचाल है। Well, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के गेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.94, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.71, बांग्लादेशी टका 33.80, नेपाली रुपीज 41.45 एनएस के साथ ही लंगन रुपीज 91.60। Well, इतना ही कहना चाहूंगी, घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

लेकिन देखो यार, बात इतनी है कि अभी जो है ना, मैं घर बार छोड़ के ना ही घर बार की तरफ निकलने की तैयारी 101% पूरी तरह से कर रही हूँ। एब्सोल्युटली आपसे बातें करते करते, दुनिया भर की कहानियां सुनाते सुनाते कभी 3 घंटे का सफर पूरा होता है, मुझे जेन्युइनली पता ही नहीं चलता यार। लेकिन अब काम धाम बहुत हो गया, अब जरा आराम फरमा लिया जाए। हाय, मेरा काम भी क्या कमाल का है, जरा सोचे मेरी जिंदगी के पर्क्स आप इमेजिन करो। आई एम अ वुमन एंड आई गेट पेड फॉर टॉकिंग। मेरे घर वाले अक्सर मुझे यही ताना देते हैं, तुम बातें ही तो करती हो, काम क्या करती हो। लेकिन यार, हमारी बातें आपके दिल में किस तरह का असर छोड़ती हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इतनी अच्छी तरह से बातें कर पाना हर किसी के बस की बात तो ना होती, तभी तो आपका और हमारा जो ये दिल वाला कलेक्शन है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे दिल का ये रास्ता आपके दिल तक पहुँचता है, यानी कि मेरी बातें बिल्कुल आपके दिल पर असर करती हैं, तो मैं घर वालों को ये बात बता सकूँ, इसलिए आप जो है ना, मुझे कुछ भी, जो भी बातें आपको मेरी अच्छी लगती हैं, मुझमें जो भी अच्छा लगता है, मुझे फटाफट से लिख के भेज दें 5000186 पर, 5000186 पर, विल गेट कनेक्टेड देयर। बाकी बातें कंटिन्यू करेंगे कल। मीनवाइल दर्शन रावल की आवाज में जाने से पहले प्यारा सा गाना सुना दो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का राम अंशु, एंजॉय।

0: यार अक्सर मैं ये बात कहती हूँ अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी कि द नेशन दैट आई बिलोंग टू इज प्रोक्रेस्टिनेशन।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और वाकई में यार ये procrastination एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लव्ज है जो बड़े होते होते कब हमारी दुनिया में आ गया ना पता ही नहीं लगा। लेकिन you know, बातों ही बातों में मैंने ये भी रियलाइज किया कि बचपन में भी हम procrastinators थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने आज हैं। हाँ, क्योंकि बचपन में अगर हम किसी चीज को टालोफाई किया करते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क हुआ करता था या फिर ट्यूशन जाना हुआ करता था। पढ़ाई से एनीथिंग पढ़ाई से रिलेटेड यूज टू बी प्रोक्रेस्टिनेटेड। बड़े होते होते ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन टर्म है ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में घुसता चला आ रहा है। सो मच सो दैट कि आज हम मस्ती मारने का जो चांस होता है उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स जो है वो कोई प्लान बना रहे हैं तो एक पल के लिए तो एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन जब वो प्लान पुख्ता हो जाएगा कि बनने ही वाला है, हम टालने लग जाते हैं कि हाँ मतलब यहाँ काम आ गया, वहां काम आ गया, स्टक एट द ऑफिस, आई कांट मेक इट फॉर द प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई रियलाइज कि एज किड्स हम कितने सही थे यार, कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर किया करते थे यार एक दिन के अंदर। मतलब पढ़ाई चलो जबरदस्ती कर ली सो कर ली, लेकिन हर एक चीज में हम घुसे हुए होते थे। हाँ मतलब अगर कोई कंचे खेल रहा है तो उसको बैठ के गौर से देखना कि वो कंचे कैसे खेल रहा है। भले ही मुझे कंचे खेलने ना आते हो, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ खड़े होके ये जरूर देखती थी कि ये कंचे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, अगर कोई कजिन बैठ के कोई बहुत ही बोरिंग कहानी भी सुना रहा है तो उसको भी हम टालोफाई नहीं करते थे, उसको भी बड़ी इंटरेस्ट से सुना करते थे क्योंकि मेरा कजिन सुना रहा है। अगर कोई बड़ा घर से बाहर जा रहा है तो हमें भी जाना होता था। हम किसी भी चीज में टालोफाई वाला जो जोन होता था ना बिल्कुल नहीं करते थे। जहां मौका मिलता था वहां चौका लगा दिया करते थे कि नहीं यार यहां पर हमें फन मिल सकता है। और आज फन चल के आता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, हम दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई साहब कल आना। ऐसी भी क्या अडल्टिंग यार। इसीलिए कहते हैं कि जहां मस्ती मारने का मौका मिले ना यार चौका लगा दिया करो। दिल तो बच्चा है जी, और इस बच्चे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखो यार। इनफैक्ट मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताती हूँ जिसकी आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो ना किसी भी चीज को टालता नहीं है। मतलब मस्ती से रिलेटेड काम को डेफिनेटली टाल देगा। उसके मन का बच्चा मुझे बहुत पसंद आता है। एक दिन ना हम लोग ऑटो में जा रहे थे, अब क्या हुआ कि जो ऑटो का टायर था वो पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से ऑटो रुक गया। ऑफ कोर्स तो काम चल रहा था, लेकिन उसने उस मौके को भी इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि उसे भुट्टे वाले की दुकान नजर आ गई। वो फौरन से गया, झट से गया, पट से वापस आया भुट्टे 3 लेकर, एक ऑटो वाले भैया के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, और मस्त बैठ के हमने भुट्टे खाए। और उसने उस ऑटो का जो टायर पंक्चर वाला पूरा जोन और सैडनेस थी उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया कि यार ऑटो खराब हुआ तो हमें भुट्टे खाने का मौका मिल गया। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज मैंने उससे सीखी और आपको फौरन बता दी ताकि आप भी इसको इनकलकेट कर पाओ अपनी आदतों में। अच्छी आदतें हमेशा उठा लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी अच्छी आदत कि मुझसे इस वक्त आके मिल लेते हो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी में, जिसको कि अब मैं 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। और सुनो जरा मेरी बात नहीं, अब ये गाना स्टे ट्यून्ड।

0: Milci.
1: Iskabana, poskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा।
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
2: जानते। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटे देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती हो या देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: मेरे बात
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो, हेलो
2: अंकल आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल आपका बेटा नहीं हूँ मैं।
3: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे?
3: कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे।
2: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया। चीख के
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Powered by IP, best rate, no stress. IP wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. IP, the best remittance rate in Qatar. Let's do the IP. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dees. To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Hasdan Oasis mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
1: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: Jewelry partner Sky Jewelry. Har pal ko banaye aur bhi khas. Sky Jewelry ke saath elegant designs, dazzling collections aur har budget ke liye perfect jewelry. New branch opening soon at Safari Mall Abu Hamur. Sky Jewelry, design for generations.
1: Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
1: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
4: Call 5501-7739.
1: Gifting partner Al Mufta Group.
5: Sara Zamana Sara Kadivana.
6: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
7: सही कहा है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्यार इंसान से क्या नहीं करवा लेता है. आपने वो मूवी देखी होगी बधाई हो बधाई, अनिल कपूर वाली बधाई हो बधाई.
6: मिर्ची VCR.
7: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड आयुष्मान की बधाई हो से पहले, बहुत पहले, हमारे अनिल कपूर की बधाई हो आई थी यार. और ये फिल्म भी मैंने देखी थी. मैं कोई फिल्म उस टाइम पर नहीं छोड़ती थी. केबल पे जो फिल्म आती थी अपन सब देख डालते थे. सारी नई फिल्में वर वॉच्ड एज इफ टू डू लिस्ट टिक मार्क हो गया था. बट दिस फिल्म वॉज फन यार. आई मीन क्या कॉन्सेप्ट था यार इस फिल्म का, कि एक हष्ट पुष्ट इंसान सिर्फ एक लड़की के प्यार में पतला हो जाता है. और मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिला था ये फिल्म देखने के बाद. हालांकि तब मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया था, लेकिन वो मोटिवेशन मुझे तब मिला जब इसकी जरूरत नहीं थी. और आज जब जरूरत है तो मिल ही नहीं रहा है. इनफैक्ट यही बात एक दिन मैंने अपने जिम में अपने जो ट्रेनर है उनको बोली थी, जब वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप रेगुलर क्यों नहीं होते हो, मैम आप डाइट पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो. तो मैं उनको यही कह रही थी कि सर मुझे ना प्यार में पड़ना पड़ेगा यार वेट लूज करने के लिए. कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, प्यार में पड़ूंगी तो या तो ब्रेकअप के चलते मैं वेट लूज कर लूंगी रेज में, या तो फिर मोहब्बत के चलते कि मैं अच्छी दिखूं उस तेज में. पर ऐसे हमसे तो ना हो पा रहा. एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस फिल्म, व्हाट अ फन फिल्म यार, जहां पर अनिल कपूर का ट्रांजिशन दिखाया गया है. एंड यू नो व्हाट, ही वाज इन हिज 40s एट दैट टाइम आल्सो. क्योंकि आज भी वो यंग है, तब भी वो 40s के हिसाब से भी काफी यंग थे. बल्कि सेट पर तो ये पूरी चर्चा हुआ करती थी. सतीश कौशिक जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो ये बात कहा करते थे कि भाई अनिल में बहुत बिजली है, यानी कि बहुत पावर है. वो इसी तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे कि अनिल में बहुत बिजली है, जनरेटर से भी ज्यादा. बिकॉज अनिल कपूर जब बाकी सारे लोग शूट्स के बीच में रेस्ट कर रहे होते थे, बैठे होते थे, उपासियां ले रहे होते थे, अंगड़ाइयां ले रहे होते थे, अनिल कपूर जो लोग थे ना क्रू के, उनको इकट्ठा करके अंताक्षरी खेल रहे होते थे. दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. आपको एक और किस्सा बताऊंगी फ्रॉम दिस फिल्म विच इज अबाउट अ लाफ अटैक जो कि शिल्पा शेट्टी को आया था. क्यों आया था बताऊंगी थोड़ी देर में, बट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे। मिशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15%।

0: Ka. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बधाई हो बधाई. ये मूवी तो किसको याद नहीं गया यार. अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, कीर्ति रेड्डी, जो अब कहीं नहीं नजर आती. तो ये फिल्म जो थी, इसको शूट करते हुए एक्चुअली हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी को अटैक आया था.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड अगर आप सोच रहे हो कि कोई सीरियस बात है, तो बिल्कुल नहीं. ये फिल्म ही सीरियस नहीं थी, तो इसके सेट पे कुछ सीरियस कैसे हो सकता था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाफ अटैक जो कि शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म की शूट के दौरान एक बार आया था. हुआ ये था कि सतीश कौशिक, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, वो बड़े मजाकिया इंसान थे, तो सभी जानते हैं. और सेट पर जो माहौल हुआ करता था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, एज इफ यू नो कोई पंजाबी वेडिंग हो रही हो, ऐसा सा माहौल था, इतना लाइट माहौल था. और एक शॉट में हुआ ये कि सतीश जी जब शिल्पा शेट्टी को गाइड कर रहे थे शॉट के बारे में फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, तो शॉट चल रहा था, लेकिन वो इस तरीके के हैंड मूवमेंट्स दे रहे थे, इस तरीके की साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि शिल्पा जो है ना, उनको लाफ अटैक आ गया. मतलब वो हंसते हंसते लोट पोट हो गई और वो शॉट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी. 7 से 8 टेक्स लगे उस शॉट को कंप्लीट करने में, तब जाके ऊपर वाले को हश थैंक यू बोला है बाकी सारी टीम ने. और अगर ना इस सेट की और आगे बात की जाए, तो ये सेट वो सेट है जहां मेरा दिल बड़ा होगा यार, अगर टाइम मशीन मिल जाए तो मैं भी जाऊं यार. क्योंकि इस सेट के जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने इस फिल्म के बारे में जब ये शूट रैप अप हो गया था, तो यही कहा था कि यार यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पंजाबी वेडिंग हो रही है, क्योंकि खाना इतना उम्दा, बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी खाना आया करता था. एंड ऐसा लगता था जैसे कोई शादी का बुफे लगा हुआ है. अब आपको भी लगा ना कि हाय काश हम भी उस सेट पे होते. जिस दिन मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी ना, मैं आपको भी इत्तला कर दूंगी, साथ पे चलेंगे. अभी के लिए आगे बढ़ेंगे. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

फैक्ट्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। तो एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s का वो दौर था जब एक बिस्किट के ऐड को भी यादगार बना दिया जाता था और इतना खूबसूरत बनाया जाता था, सो मच सो दैट कि हमारे जो फेवरेट मारी बिस्किट हुआ करते थे ना, उसका पूरा पूरा जिंगल था भाई हमारे पास
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, इसका वो जो ऐड था जिसमें इतना सारा केओस था कि एक बिस्किट के पैकेट के पीछे एक अंकल इतने बावले हुए चले जा रहे थे कि गिरते पड़ते जैसे तैसे वो बिस्किट के पैकेट तक पहुंच ही गए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि बिस्किट्स जो थे वो किस तरीके से पैक हुआ करते थे। पहले कागज में पैक होके आया करते थे यार, धीरे धीरे करके फिर उनकी पैकिंग जो है वो चेंज होती गई, लोगोस बदले, कलर्स बदले। लेकिन आज भी ना मुझे मारी बिस्किट मक्खन लगा के खाने में जो मजा आता है ना, वो और किसी चीज में नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने स्कूल में ही सीखा था। इंटरवल में अपनी एक फ्रेंड का टिफिन खाया था और उसने मारी पर मक्खन लगाया था और मेरे घर आके मम्मा को यही बोला, मम्मा आज से मैं ऐसे ही खाऊंगी इस बिस्किट को। उसके बाद जो ये बिस्किट इतना बचा करते थे और हमेशा रहा करते थे पैंट्री के अंदर, वो गायब होने लग गए क्योंकि मक्खन लगा लगा के मैं उसको खाने की तरह खाने लग गई थी। ओ माय गॉड, बात करते करते मुंह में पानी आ गया। लेकिन अभी फिलहाल इस एड को सुन के जरा यादें ताजा करें। अच्छा, खास बात और ये थी इस एडवर्टाइजमेंट की कि इसके लिरिक्स इंग्लिश में थे एंड एट दैट टाइम इंग्लिश गानों तक हमारी इतनी पहुंच नहीं थी, तो ये जो गाना था यानी कि ये जो जिंगल था एक बिस्किट के ऐड का, इसे ही गा गा के हम इम्प्रेशन जमाने की कोशिश किया करते थे और ना फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, वो भी क्या दिन थे। इम्प्रेशन जमाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ही काम आ जाया करता था यार। एनीवेज, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए. हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है आपने.
3: तो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे हैं भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका आप.
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको.
3: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बेटा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
3: सर. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता
2: है कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: मेलेडी ऐसे तो कहने को एक शब्द ही है, लेकिन कुछ गाने जब हम सुनते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये जो शब्द है ना, इसको डिफाइन करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। ये गाने सुनकर ही हमें समझ में आ जाता है कि मेलेडी इज इक्वल टू दिस सॉन्ग। एंड हम तुम का ये गाना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में इज एक्चुअली द एपिटमी ऑफ मेलेडी।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मैंने भी कुछ मेलेडीज आपके लिए इकट्ठी करके रखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो मेलेडी खाओ खुद जान जाओ वाली कैंडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टॉफी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऐसी धुने जो कि दो अलग अलग गानों से हैं, और आपको उन दो धुनों के मिक्स को सुनकर पहचानना है कि आखिर ये धुने कौन से गानों से है। तो जी, ये लो आज की मेलेडी। और यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मेलेडी सुनो खुद जान जाओ।

और अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये दोनों ही डांस ट्रैक्स हैं, और यहाँ पर जो एक्टर्स इस गाने में हैं वो दोनों के दोनों दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि नाच तो हम भी सकते हैं। अगर सही जवाब दिमाग में आ गया तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मन मूवी से ना देर इज दिस ट्रैक जो मुझे अच्छा तो लगता है और याद भी है, लेकिन ये मुझे और खास तौर पे इसलिए याद है क्योंकि ये गाना मेरे कजन को ना चिढ़ाने में बड़ा काम आता था। उन्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे कजन को नापसंद भी था, और अब इस गाने के बारे में एक खबर और पता लगी है, वो ये कि ये गाना ओरिजिनल भी नहीं। द सॉन्ग इज

गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं संजीव दर्शन. नाउ बेसिकली दिस गाना हैज नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनी इंग्लिश और पाकिस्तानी सॉन्ग. भाई हम जा चुके हैं मलेशिया. दिस इज अ मलेशियन सॉन्ग सिदांग सिदांग साजा, जो कि इवान करके एक आर्टिस्ट है वहां पर, उनका गाया हुआ है. और सुनिए जरा कितना प्यारा लग रहा है ये गाना. हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल प्यारा लग रहा है.

देखो यार, नकल में अकल में हमेशा कहती हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन यार संजीव दर्शन ने जरा भी इतना और एफर्ट नहीं डाला कि थोड़ा अपना कुछ ओरिजिनल भी डाल देते। आई मीन ठीक है, आपने एक पीस उठा लिया, लेकिन आपने तो पूरा पूरा गाना ही उठा लिया यार कॉपी करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट। चलो इसी बात पर, भले ये गाना ना सही, लेकिन मन मूवी से एक और गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
4: Hi.
5: How are you feeling right now?
4: The Josh is high. I am excited a lot.
3: The feeling
4: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक बात बताओ, क्या आपको पता है शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी थी?
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ज्यादातर लोगों को ये पता है कि शाहरुख खान की पहली मूवी वॉज दीवाना, बट नॉट रियली। वेल, years ago, यानी कि 1989 में शाहरुख खान ने एक टेलीविजन फीचर फिल्म में काम किया था, जिसे कि लिखा अरुंधति रॉय ने था और डायरेक्ट किया था प्रदीप कृष्णन ने। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पर टेलीविजन के नाम पर डीडी वन हुआ करता था, तो ये वहीं के लिए बनी थी फिल्म। फिल्म का नाम था इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, जो कि एक टेलीविजन फिल्म थी नरेटिंग द फनी लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो कि आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। And that person was definitely not Shahrukh Khan because Shahrukh Khan was playing a character role in this film. और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ गेस हु वाज देयर, मनोज बाजपेयी। इनफैक्ट तब के जमाने के काफी सारे टेलीविजन एक्टर्स प्लेड सम और दी अदर रोल इन दिस फीचर फिल्म। यूट्यूब पे जाओगे ना तो ये फिल्म आपको आज भी मिल जाएगी। गो चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी। तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक?
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ। और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इन टाइम्स जब लड़कियां अपनी उंगलियों की अंगूठियां दिखाकर बता रही होती है कि आई सेड यस, मुझे तो आज भी उंगलियों में अंगूठी की जगह पापड़ पहनना ही ज्यादा पसंद आता है यार।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड याद है आपको कैसे हम अपनी उंगलियों में ये पापड़ फंसाकर घुमा करते थे? कुछ घरों में इन्हें फ्राइम्स कहा जाता था, कुछ घरों में इन्हें पापड़ कहा जाता था। लेकिन हाँ, एक बात थी कि हर कोई इसे उंगली में फंसा फंसा कर ही खाता था। देखा जाए तो बॉस, हम लोगों में स्वैग बड़ा था यार। मतलब पापड़ उंगली में फंसा के आज कोई खाता है? नहीं, ये ट्रेंड तो हमने ही शुरू किया और हमने इसे खत्म कर दिया। इस पापड़ को ना मैंने कभी प्लेट में लेकर नहीं खाया, बाय गॉड, ऑलवेज उंगलियों में पहन पहन कर ही खाया है। कभी येलो तो कभी रंग बिरंगे, बट टेस्ट हो या होल लुक, दिखते थे ये कितने चंगे। Hey, this also reminds me of that jelly, जो कि अंगूठी के नग की जगह फिट हुआ करती थी। और इसे खाने के लिए भी ना उंगली में पहन लिया जाता था और हर बच्चा इसे चाट चाट कर खाता था। कितने क्लासी हो गए ना आजकल हम लोग, क्योंकि अब ऐसी जेली या पापड़ खाने में कितनी शर्म आएगी हमको। हाँ, अडल्टिंग बाबू भैया, अडल्टिंग। चलो इसी बात पर लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रैक, जिसे मैं डेडिकेट करती हूँ इस पापड़ और ये उंगली में पहनकर खाने वाली जेली को, जिससे मिलना पल दो पल का ही हुआ था लेकिन जिंदगी भर की याद है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।

0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिस टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म रहना है तेरे दिल में आज तक भी हमारे दिल में ही रह रहा है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऑनेस्टली RSTDM की जो म्यूजिक थी ऐसी म्यूजिक ना उस दौर में तो क्या आज के दौर में भी मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर हमने कभी नहीं सुनी क्योंकि हैरिस जयराज का जो कॉम्पोजिशन था फॉर द एल्बम ऑफ दिस मूवी बिल्कुल ही हटके था। ये म्यूजिक आई डोंट नो किस जोन में बैठ के बनाया गया था क्योंकि जब ये म्यूजिक आया उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस ट्रेंड को शुरू करने की कोशिश करी कि यू नो कंटेम्प्रेरी टेस्ट और फील जो है वो गानों को दिया जाए लेकिन जो बात रहना है तेरे दिल में भी थी वो कहीं नहीं मिली। एंड यूजुअली लोग अपने प्यार का इजहार जो करते हैं वो बड़े मासूमियत के साथ ऐसे चुपचाप बैठे हुए थोड़ा शर्माते थोड़ा घबराते हुए करते हैं लेकिन इस गाने में तो प्यार के इजहार का कुछ अलग ही रंग नजर आया है। उछलते कूदते नाचते गाते अपने प्यार का इजहार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि
2: कहना

मैंने कहा ना, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हटकर है यार। और इस गाने में इस ख्याल का जिक्र किया गया है कि एक अजनबी पे मुझको एतबार क्यों है, हर घड़ी खुमारी क्यों है, धड़कने बता। और ये सवाल प्यार में पड़े इंसान को जरूर होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक जिंदगी जी चुके हो, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जिन्हें आप अपना अपना मानते हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन न जाने कहां से एक अजनबी आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके दिल में ज्यादा बड़ा प्लॉट खरीद लेता है और वहां बस जाता है। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार ये कल का आया हुआ इंसान, इसके ऊपर मुझे इतना ज्यादा एतबार क्यों है, इस पर इतना प्यार क्यों है, और बाकी सारे लोग जिन्होंने इतने सारे साल हमारी जिंदगी में इन्वेस्ट करे हैं उनका क्या। तभी तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, इसका जिंदगी में कोटा ही अलग चलता है। ये ना दोस्ती में आता है, ना रिश्तेदारी में आता है, ना फैमिली में आता है, ये एक अलग कोटे में चला जाता है। वो अलग बात है कि जब प्यार का इजहार, इकरार, प्रपोजल और न जाने क्या क्या हो जाता है, तो फिर वापस से वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप उसे अपना दोस्त बना लेते हो, फिर वो फैमिली बन जाता है, रिश्तेदारी में सभी आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो प्यार है ना, बस वो बहुत ही अलग जज्बात होल्ड करके रखते हैं अपने दिल में हम, है कि नहीं। चलो जी, नाउ विद दिस, यही गाना आपके लिए लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा तो मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रॉक रॉक
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: आनंद राज आनंद की आवाज में ये गाना किसने सुनाया है आपको? लेकिन फिलहाल कल हम एक बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी थे। हम में से ज्यादातर लोग उन फैमिलीज के लिए जरूर प्रे कर रहे हैं जो कि यू नो इस रसलाफान इंसिडेंट में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। यस, बात करो मैं उन 13 लोगों की जिनके लिए खुद कतर एनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरह से वो 13 लोगों की लाइफ, वो फैटेलिटी जो रसलाफान में परसों रात एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से हुई, और इनमें ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान से थे। वेल, 66 पीपल आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि वो इंजर्ड है। और रसलाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हालांकि कोई भी तरह का लीकेज नहीं है, ये भी क्लियर किया गया है। कतर एनर्जी एलएनजी ने क्लियर किया है कि कोई भी लीकेज नहीं देखा गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी अफेयर्स, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ कतर एनर्जी हिज एक्सलेंसी साद शरीद अल काबी साहब ने ये सारी डिटेल्स कल मीडिया के सामने रखी। एंड बस हम यही करेंगे कि जिन लोगों की जिंदगी इसमें चली गई इस पूरे इंसिडेंट में, हम उनके परिवार के लिए दुआएं करेंगे और यही प्रे करेंगे कि वो इस लॉस को सह पाने के लिए हिम्मत जुटा पाए, इस उम्मीद में कि आगे कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे होंगे, बहुत सारी तैयारियां की जा रही होंगी, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि कभी कभी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। हम एक दूसरे से कितने गिले शिकवे रखते हैं, कितनी सारी बातें रखते हैं, लेकिन सोचिए एक पल में इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। आगे बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि हमें किसी से कभी गुस्सा नहीं होना यार, बातें करते रहनी, सबसे अच्छे से ही पेश आना है। जिंदगी में कब हमारा आखिरी मोड़ हो हमें पता नहीं, और खासकर जब हम घर से दूर कहीं काम करने जाते हैं, वहां पर हम दोस्त यार बनाकर ही उन्हें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। शाम के 4:06 के करीब का समय।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आई एम श्योर सरकार, हमारी कतर की हुकूमत पूरी मदद करेगी उन सभी परिवारों की जिनके लोगों की जान गई है। पर याद रखिए हमें और आपको भी उनके लिए दुआएं करनी है, प्रे करना, और आगे कभी हमारे कतर पे ऐसा कोई दिक्कत का समय ना आए, संकट का समय ना आए, इसके लिए भी दुआ करनी है। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga. Alo? Alo?
2: Ama bai. Bai
1: kun bola
2: hai? Ama mujhe ab pata chala.
1: Alo, bai kun bola hai? कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे आप बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: भाई मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था. अब मुझसे कह रहा
1: बता तो दे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात
2: है. तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने.
1: अबे भाई कौन लताशा?
2: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
1: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं.
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा.
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था. बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया. मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह. नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी.
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ.
2: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी. तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
1: तो फोन तूने करा, तूने करा?
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी. तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से.
1: मैं तो पूछा तू बोल कैसे रहा भाई?
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया. मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी.
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने हंसवा दिया, टेंशन अलग दे दिया.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज फॉर मी लव इज डेथ.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है.
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल ये गाना यहाँ खत्म हुआ और आपके साथ फिर से जुड़ गया मस्त मौला गौरव। और यहाँ मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने एकदम क्लियर किया है कि इंसिडेंट जो हुआ था फैक्ट्री में रासलाफान इंडस्ट्रियल सिटी में, वहां पर टेक्निकल मैलफंक्शन हुआ। उस दौरान एक बड़ा एक्सप्लोजन, 13 लोगों की जान गई, 66 पीपल आर इंजर्ड। अलग अलग नेशनैलिटीज हैं इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं वहां पर, लेकिन कोई भी बड़ा लीकेज नहीं हुआ है। यस, इमरजेंसी रिस्पांस टीम रासलाफान में है इंडस्ट्रियल सिटी में, एंड उनके प्रोसीजर शुरू हो चुके थे उसी समय से। एंड कुल मिलाकर इतने कहना चाहता हूं, इंसिडेंट साइट पर हर तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। और मिनिस्ट्री ये बार बार कह रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है वो सारे प्रोसीजर्स को वेरीफाई कर रही है, हर तरह की जो भी इंसिडेंट में चीजें हुई उसको देख रही है, एंड किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है। नो लीक हैज बीन डिटेक्टेड आफ्टर रासलाफान इंसिडेंट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि हम और आप किसी भी बात से ना घबराएं, और कुछ भी ऐसा होता है तो हमें जरूर सोर्सेज से, सही अथॉरिटीज से ही खबर लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों का काम ही है सनसनीखेज बनाने का मामला, खुद लग जाते हैं पत्रकार बनने और बाद में पता लगता है भैया सब हवाई निकला। इसलिए ज्यादा किसी भी ट्रस्टिंग सोर्स के अलावा भरोसा ना कीजिए किसी पर भी। सिर्फ और सिर्फ Q&A आपके लिए बना हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं, आप उन सारी अथॉरिटीज के सोशल मीडिया हैंडल्स को देख सकते हैं जहां पर राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं ये लत होती है आम खाने की लत। अरे वरना ऐसे कैसे इतना टन आम बिक जाएगा और पिछली बार का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। यस
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मैंगो एग्जीबिशन जो कि सुवाकिफ में चल रहा है वहां पर पब्लिक टर्नआउट बहुत ही ज्यादा है। और थर्ड हम्बा इंडियन मैंगो एग्जीबिशन में हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक 84 टन आम बिक चुके हैं। यस, यानी कि अगर 5 दिनों का आंकड़ा नोटिस किया जाए तो लास्ट ईयर हम इस समय तक 56 टन बेच पाए थे, लेकिन इस बार पहले ही 5 दिनों में 84 टन आम बिक गया है। 74,000 विजिटर्स इन फर्स्ट 5 डेज में वहां पहुंचे हैं, जो कि पिछली बार 52,000 था। यानी कि इस बार ये जो 1 लाख वाला आंकड़ा मैं मान के चल रहा हूँ ये इस वीकेंड आने से पहले लग रहा है पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर कल हम भी वहां पहुंचे थे, हमने क्या किया क्या नहीं सब आपने रेडियो पर सुना था, और अगर आप मिस कर गए तो कोई नहीं, आज भी सुनाएंगे। लेकिन इतने सकता हूं स्वाद का चटकारा, मैंगो का सारा नजारा, और मैंगो डोसा से लेकर मैंगो मोमोज तक, मैंगो चिकन टिक्का से लेकर मैंगो के नए नए डिशेस, सब कुछ आपको यहां मिलता है। तो जरूर जाइए, शाम 4 बजे खुल जाता है। एंड बड़ी बात यह है कि आप यहां जाएंगे तो आप कहेंगे अमा यार मैंगो की इतनी वेराइटी हमने पहले तो नहीं देखी, यहां आपको मिल जाएगी। जाइए खरीदिए, अपने आप को खास फील कराइए ये आम खरीद कर। मिर्ची इट्स हॉट

0: फिलहाल याद पिया को नहीं पानी को करना है। जबरदस्त गर्मी का प्रकोप और हमारे कतर में ह्यूमिडिटी ने भी अपना पारा बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हमें और आपको भी पानी पीते रहना है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान आज 42 डिग्री सेल्सियस पर था, वहीं दिन का मिनिमम अराउंड 30, लेकिन रियल फीलिंग 46 डिग्री सेल्सियस वाली है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि विंड स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर पर ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। 36% के आसपास ये ह्यूमिडिटी हमें और गर्म फील कराती है, पर कोई नहीं, हम पानी पीते रहेंगे, इस ह्यूमिडिटी को हराते रहेंगे और सूरज चाचू से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जून आ गया है, जुलाई में थोड़ी और चमकान कम कर दो, अगस्त आते तक कम कर दो, ताकि हम कह पाए यार पहली बार सितंबर में मौसम ठीक ठाक लग रहा है। 89.6 मिर्ची वन पर बहुत ही आशावादी इंसान मस्त बोलो गौरव, मिर्ची इट्स हॉट हरारा कतीर।
3: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ मिर्ची मम्मी, तुम सारा कोई और है। ओ मिर्ची मम्मी, मचाओ तुम शोर है।
6: एंड हियर वी हैव मिर्ची मम्मी विनर उर्मी माला। हाउ इज द फीलिंग?
7: हाय,
6: हाउ यू फीलिंग राइट नाउ?
7: द जोश इज हाई, आई एम excited a lot.
6: The feeling
7: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai aur aisa lag raha hai ki main saatve aasman pe hu. Sab itne talented the, mujhe aisa lag raha tha ki koi bhi jeet sakta hai, lekin jaise jaise naam aa rahe the khud ka confidence badhta ja raha tha kyunki maine apne efforts dale the, maine apna 100% dal diya tha. So shayad maine kuch choda hi nahi. Thank you so much. Oh, mere

0: बंजारे की आवाज में ये बैरन गाना सुनाया किसने? लेकिन फिलहाल घड़ी किसी का टाइम बताना भी हमारी जिम्मेदारी है, 5:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: मेसी एक लेकिन रिकॉर्ड्स अनेक। यस, कल अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को हराकर अपने छठे एडिशन में लगातार नॉकआउट में एंट्री बनाई है, यानी कि ये छठा वर्ल्ड कप है जब अर्जेंटीना फिर से नॉकआउट में पहुंच पाया है। लेकिन इसके साथ कर अर्जेंटीना के कैप्टन लायनल मेसी ने कुछ बड़ा इतिहास बनाया है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अब मेसी है। 18 गोल्स के साथ उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्लोसे का रिकॉर्ड तोड़ दिया जर्मनी के। इसके अलावा वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। यस, 28 मैचेस खेल लिए अब मेसी ने वर्ल्ड कप में, और उससे भी बड़ी बात, अब सबसे ज्यादा विन इन अ फीफा वर्ल्ड कप बाय एनी प्लेयर इज मेसी ओनली। यस, मेसी 18 मैचेस में जीते, ये भी फीफा वर्ल्ड कप में एक इतिहास बन गया है। एंड सबसे ज्यादा मिनट्स मैदान पर खेलने वाले फीफा वर्ल्ड कप के खिलाड़ी बन गए, 2489 मिनट्स, यानी कि एक इंसान ने कल इतिहास की झड़ियां लगा दी है। अब मेसी फैंस यही चाहते हैं कि ये टीम ऐसी तीसरी टीम बन जाए जो अपनी टाइटल को डिफेंड कर पाए। इससे पहले यह कारनामा इटली ने 1934-1938 में, ब्राजील ने 1958-62 में, और लोग चाहते हैं कतर के बाद अब यूएस, मेक्सिको, कनाडा में भी ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना के पास आ जाए जहां वो वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड कर ले। अब ये कितना सच होगा कितना नहीं, बट आई एम श्योर पोर्चुगल के फैंस बिल्कुल ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस बार ये कामयाबी पोर्चुगल के हाथ लगे। और हम बस इतने कहेंगे, ऐसे मेसी फैन जीत गए तो अच्छी बात, वरना पोर्चुगल का देंगे साथ मिर्ची साथ।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: बेटा, अब घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, देख आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया गालो बेटे, क्या हो गया हमारा?
1: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
1: हैं। मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटा देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात
2: करा दीजिए। बेटे आ
1: जा अंकल, माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
2: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते हैं।
1: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: अरे बात मेरे बात,
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
1: हेलो
2: बेटे, हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: हेलो बेटे, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं हूं मैं। आप आजू आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया? मैं
2: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आ जा बेटे।
1: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे,
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेड।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: या आपका कोई दोस्त करामा में काम करता है तो पार्टी ले लो यार। मस्त मौला गौरव आपको बता दे कि कतर में करामा ने टॉप प्राइज जीता है इन गवर्नमेंट सर्विसेज रीडिजाइन चैलेंज 2026 में।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, करामा ने गवर्नमेंट सर्विस रीडिजाइन चैलेंज 2026 में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जो कि ये दिखाता है कि इनोवेशन और स्मार्ट थिंकिंग का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और करामा ने इसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विसेज को और कतर में बेहतर बनाने के लिए जो नए आइडियाज सॉल्यूशंस दिए वो सबको इंप्रेस कर देता है। और कतर में करामा जीत जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज रीडिजाइन चैलेंज 2026। और जैसे ही ये बात सुनी मुझे एकदम अपने स्कूल डेज की याद आ गई, जब हम भी एकदम क्विज चैलेंज में रहते थे, पार्टिसिपेट कर लेते थे, ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, स्पीच में करते थे, और हमें लगता था कि यार बस कैसे भी अवार्ड जीत जाए। उस समय हालांकि ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि कॉम्पिटिशन के साथ साथ आप जब मेहनत करते हैं तो आप अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स को भी आगे पुश कर देते हैं, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमेशा अच्छा ग्रोथ प्रोग्रेस लेकर आता है। बिल्कुल उसी तरह जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये रेस चली तो करामा के हाथ ये मेहनत करने के बाद लगी, और अल्टीमेटली मुझे तो यही लगता है भाई, कंपटीशन चाहे एक दूसरे से बेहतर करने का ही हो, लेकिन इससे अल्टीमेटली फायदा हम पब्लिक का ही होता है। लेकिन करामा को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उनकी अचीवमेंट भी एक बात बताती है कि करामा जिस तरफ आगे बढ़ रहा है और वो जिस तेजी से अपने आप को पूरी की पूरी सर्विसेज को बदल रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ हर दिन के साथ कुछ नया इनोवेशन, स्मार्ट मीटर्स से लेकर स्मार्ट वाटर मीटर्स तक सब कुछ ये बता रहा है, दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, और उसी का ये रिजल्ट है ये अवार्ड। तो ऐसे में अपने करामा में काम करने वाले दोस्तों से एक पार्टी तो बनती है दोस्त, कुनाफा बकलावा तो कम से कम खिलवा दो, इतना तो खर्चा कर ही सकते हो। है मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
8: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
10: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
11: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
12: खूब मिलेगा, मिलेगा।
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

सोचिए कोई शहर इतना खूबसूरत हो कि हर वक्त वहाँ एक अलग सी मस्ती हो, सिटी ऑफ जॉय नाम ही कह दिया जाए, और वहाँ हर इंसान की बोली में एक मिठास हो, लेकिन अचानक से वहाँ सब कुछ अगर बदल जाए तो यस। और कोलकाता में ऐसे ही कुछ बदल गया है जिसको रोकने के लिए आ रही ऑफिसर ब्राउन। कोलकाता जहाँ पर लोग हमेशा मदमस्त रहते हैं, सिटी ऑफ जॉय नाम ही है, एंड रसगुल्ला से लेकर वहाँ पर मिष्टी दोई का भी बड़ा बोलबाला है। लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, काम में बिजी लेकिन उसके बाद भी मस्ती को ही वैल्यू देते हैं। उस कोलकाता में अचानक से उनकी होली जब खेली जाती है तो वहां पर माहौल गड़बड़ हो जाता है, और माहौल गड़बड़ हो जाता है फिर लोगों को लगता है आखिर ये कौन है इसके पीछे जो हमारे शहर को इस तरह से बदल रहा है। और ऐसे में आती है ऑफिसर ब्राउन और जो लोग ये खुद सिटी ऑफ जॉय नाम ही है, एंड रसगुल्ला से लेकर वहां पर मिष्टी दोई का भी बड़ा बोलबाला है। लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, काम में बिजी लेकिन उसके बाद भी मस्ती को ही वैल्यू देते हैं। उस कोलकाता में अचानक से खून की होली जब खेली जाती है तो वहां पर माहौल गड़बड़ हो जाता है, और माहौल गड़बड़ हो जाता है फिर लोगों को लगता है आखिर ये कौन है इसके पीछे जो हमारे शहर को इस तरह से बदल रहा है।

लीजिए, क्योंकि यहां पर ये ऑफिसर ब्राउन की सीरीज ब्राउन शानदार है, जहां पर करिश्मा कपूर खुद ये रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को पर्दे पर देखना और वहां पर इस क्राइम थ्रिलर को देखकर इसे सॉल्व होते हुए देखना अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस होगा। सो वेटिंग फॉर व्हाट, गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ Z5, जहां पर मस्त मौला गौरव ने आपको याद दिलाया। एंड क्या बता, वीकेंड पे बिंज वॉच करके पूरे मस्ती से ये देखी लो 89.6 मिर्ची 1, मजा आएगा। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट,
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
7: Hi.
6: How are you feeling right now?
7: The Josh is high. I am excited a lot.
6: How's the feeling?
7: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

आईसीयू में है मेरा वॉलेट। न जाने इसमें आई जो सांसें होती है वो पैसों के रूप में, रियाल के रूप में, वो कहाँ चली जाती है 15 तारीख के बाद, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। पर अगर आपके पास है तो रेट आज फिर से अच्छे है। आई पेपर इस वक्त आपको मिल रहा है एक कचरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 25.98, 25.98 रुपए भारतीय मुद्रा। वही अगर हम बात करें तो आपको श्रीलंकन रुपीज मिलेंगे 91.94 अगेंस्ट 1 कचरी रियाल। अगर इसके बाद हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, 76.74 पाकिस्तानी रुपीज वाहिद कचरी रियाल के बदले। वही अगर हम तपाई को नेपाली रुपीज का रेट बात करेगा दाजो, एक तो कचरी रियाल के बदले 41.58 का भल्चर रेट है दाया जी, 41.58 का रेट छ बहनी अगर घर पैसा भेजने राइट टाइम छो। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टका का बात करेगा दादा, एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.83 तो 33.83 ऐसा रेट चाहते तो बांग्लादेशी टका का अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। मस्त मोर बर्फ के साथ ये था करेंसी का हालचाल। आई पे ऐप पर आपको ये सारे रेट्स मिलते हैं प्लस कुछ और एडवांटेज मिलते हैं, डाउनलोड कर देखो मौज होगी। मिर्ची इट्स हॉट।

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौल गौरव के साथ.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

कोई भी पेन को छोटा मत समझो। मस्त बोलो गौरव आपके साथ देवी और सज्जनों, इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे ना दांतों में दर्द होता है, हम उसे एक छोटा सा पेन समझ कर मम्मी नानी के नुस्खे लगा कर कोशिश करते हैं कि सब चीजें ठीक हो जाए, लेकिन यही बाद में चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए राइट टाइम पर राइट डेंटल कंसल्टेशन मिल जाए तो आपकी चीजें बेहतर हो सकती है। एंड ऐसे ही एक फ्री डेंटल कंसल्टेशन आपको दे रहा है किम्स हेल्थ। यस, किम्स हेल्थ आपसे कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम है और आप इस बात से परेशान है कि कौन ही बता पाएगा और जाएंगे तो कुछ पैसे लग जाएंगे, तो नहीं भाई साहब, आपको फ्री डेंटल कंसल्टेशन मिल रहा है। अपने दांतों के इश्यूज को पहचान लो और जैसे ही आपको डेंटल इश्यू पता लग जाए आप आगे उस पे स्टेप क्या लेते हो इसके बारे में आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। एंड याद रखिए ये सारी कैटेगरीज के लिए, बड़ी बात यह है कि किम्स हेल्थ पर जाकर आप ये फ्री डेंटल कंसल्टेशन ले सकते हो जहां पर आपको बेहतरीन डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो आपके दांतों की प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं साथ ही साथ आपको राइट सॉल्यूशन बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये फ्री डेंटल कंसल्टेशन का फायदा उठा लो, मौका सीमित और समय तक है। ऐसे में आपके पास मौका है कि अब बातों को टालो नहीं और वो देसी नुस्खों को पीछे छोड़ो, फ्री डेंटल कंसल्टेशन लो ताकि आपकी आने वाली समस्या अभी से ही कम हो जाए। 89.6 मिर्ची 1 पर ये मस्त वाला गौरव बताया, याद रखना मिर्ची इज हॉट, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी और वो दांतों से ही आती है, तो ध्यान रखिए इसका।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidba la murga.
1: Mirci, murga. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शॉप।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 91 पर मैं हूं आरजे मस्तबोला गौरव। मिर्ची मम्मी अवार्ड सीजन 5 ग्रैंड फिनाले खत्म हो चुका है एंड वी हैव द टॉप 3 विद अस। सबसे पहले हाउ इज द एक्साइटमेंट सेकंड रनर अप दिव्या?
1: आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। एक्चुअली आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो एंड नाउ टुडे दैट आई एम स्टैंडिंग हियर विनिंग दिस क्राउन थर्ड सेकंड रनर अप इट डजंट मैटर एंड द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप दे आर वेल डिजर्व्ड। I'm so happy with this. Thank you very much. I'm
0: Thank
1: so excited.
0: You. That was Divya, second runner-up.
2: And now comes the first runner-up.
0: Neha with us.
3: Hello.
0: How is the feeling?
3: I am so, so, so happy. Yes. I am so happy. To the mothers, you are great. You should not let anyone judge you. You are the best.
2: You are the best. And yehi hum bhi sari moms ko keh rahe the. Aur ye thi second runner-up Divya and first runner-up Neha. And winner kya kehne wali hai? Uske liye bhi intezaar kijiye. Mirchi sunte rahiye. It's hot. Thank you.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
6: कैच ऑफिसर ब्राउन,
8: ऑफिसर ब्राउन
6: टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
9: अर्ज किया है
10: इरशाद। इरशाद।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की

0: टैक्सी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे, यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
1: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
2: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं ये लत होती है आम खाने की लत। अरे वरना ऐसे कैसे इतना टन आम बिक जाएगा और पिछली बार का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। यस
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मैंगो एग्जीबिशन जो कि सुबह चल रहा है वहां पर पब्लिक टर्नआउट बहुत ही ज्यादा है। और थर्ड हम्बा इंडियन मैंगो एग्जीबिशन में हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक 84 टन आम बिक चुके हैं। यस, यानी कि अगर 5 दिनों का आंकड़ा नोटिस किया जाए तो लास्ट ईयर हम इस समय तक 56 टन बेच पाए थे, लेकिन इस बार पहले ही 5 दिनों में 84 टन आम बिक गया है। 74,000 विजिटर्स इन फर्स्ट 5 डेज में वहां पहुंचे हैं, जो कि पिछली बार 52,000 था। यानी कि इस बार ये जो 1 लाख वाला आंकड़ा मैं मान के चल रहा हूँ, ये इस वीकेंड आने से पहले लग रहा है पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर कल हम भी वहां पहुंचे थे, हमने क्या किया क्या नहीं सब आपने रेडियो पर सुना था, और अगर आप मिस कर गए तो कोई नहीं, आज भी सुनाएंगे। लेकिन इतने सकता हूं, स्वाद का चटकारा, मैंगो का सारा नजारा, और मैंगो डोसा से लेकर मैंगो मोमोज तक, मैंगो चिकन टिक्का से लेकर मैंगो के नए नए डिशेस, सब कुछ आपको यहां मिलता है। तो जरूर जाइए, शाम 4 बजे खुल जाता है। एंड बड़ी बात यह है कि आप यहां जाएंगे तो आप कहेंगे हमारे यार मैंगो की इतनी वेराइटी हमने पहले तो नहीं देखी, यहां आपको मिल जाएगी। जाइए खरीदिए, अपने आप को खास फील कराइए ये आम खरीद कर। मिर्ची इट्स हॉट।

0: बनके
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
7: Hi.
6: How are you feeling right now?
7: The Josh is high. I am excited a lot.
6: How's the feeling?
7: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: शाश्वत सजे मधुबंती बख्शी शरारत सिखा रहे, लेकिन हम तो सीधे साधे आदमी नाम ही है। एंड फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 7:04 हो जाए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, आपको जानकर ये खुशी होगी कि सिर्फ मदर्स डे सेलिब्रेशन ही होता, पापा डे का सेलिब्रेशन इस बार हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े शानदार तरीके से बन रहा है, क्योंकि वेकेशन आ गए हैं। आई एम वेरी श्योर आप 2-4 दिन में अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। पापाज, यस, बता दें फादर डे का सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम 21st of June to 27th of June एट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इस दौरान एवरी डैड पासिंग थ्रू हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर सोलो, आपके लिए यह मौका है। 21st से 27 जून एक डेडिकेटेड फादर्स डे प्रायोरिटी लेन बनाई गई है, एक लिमिटेड एडिशन गिफ्ट के लिए पिकअप लेन है। आप जाइए, यहां पर एक्सक्लूसिव टी शर्ट, मग्स एंड स्टिकर्स बन रहे हैं, एंड ये स्पेशली फादर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। तो ऑल दी डैडीज स्पेशल फील करो यार, मुझे पता है कि कई बार पापा लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते, बच्चों के सामने एकदम मजबूत कठोर बने रहते हैं, पर शायद ये वो टाइम है जब आपको बोलना पड़ेगा, बच्चों देखो मैं हूं तुम्हारा पापा, और पापा के लिए भी इस तरह के सेलिब्रेशन होते हैं। थैंक यू टू हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्होंने फादर्स को इतना स्पेशल फील कराने की तैयारी की है। आई एम श्योर सारे डैडीज विल एंजॉय दिस प्रायोरिटी लेन, और पत्नी को भी दिखाएंगे, देखिए हम लोगों के लिए भी सेलिब्रेशन होता है। मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो हेलो
2: हेलो मिस्टर अनिल।
1: हाँ जी
2: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
1: तीनों आ गए
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
1: जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
1: हेलो,
2: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
2: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
1: भड़क रहा हूँ भाई, क्या तरीका है,
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं?
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं, अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप।
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा।
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा 7 महीने 7.5 महीने का, एक बच्चा 1 साल 3 महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
6: अरे यार हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन, फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

जमाने को देखकर कभी कभी खुद का रंग भी बदलना चाहिए। मस्त मौला गौरव। और शायद एप्पल ने भी अब ये सोच लिया है कि उसे भी अब खुद के रंग को और ढंग को बदलना है, तभी तो अब वो अपना फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी कर रहे हैं। यस, कहा जा रहा है कि उनका ये अल्ट्रा आईफोन जो है ये एक फोल्डेबल आईफोन हो सकता है, जिसका डेब्यू इस साल सितंबर में होगा, जब आईफोन हर साल अपनी फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करता है। वेल, कहा यही जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ऑन शेड्यूल ये लॉन्च जो है वो होगा। हालांकि प्रोडक्शन अभी थोड़ा सा चैलेंज में आ सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक न्यू सप्लाई चेन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री मारने के पहले एप्पल बहुत सारा रिसर्च कर रहा है, थोड़ा सा ये आगे टल सकता है। पर कहा यही जा रहा है सब कुछ ठीक रहा तो आपको आईफोन अल्ट्रा बोले तो फोल्डेबल आईफोन जल्द मिलने वाला है। हम तो यही बात सोच के घबरा गए कि अभी तो जब सीधा साधा है तब एक किडनी बेचनी पड़ रही है, उसका इलाज कराना पड़ रहा है, अब जब फोल्डेबल आ गया दोनों स्क्रीन वाला, मुझे तो लग रहा है इसमें किडनी दोनों दोनों ना चली जाए। फिलहाल इतने कहेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक ये मार्केट में आपको दिखाई पड़ सकता है। और अगर ऐसा है तो हम ये मान लेंगे कि बड़े बड़े को कभी कभी लपेटना पड़ता है, उनसे झुकना पड़ता नहीं लपेटना पड़ता है। तो अब इन्होंने अपना लपेटू फोन लाने की तैयारी कर ली है। ऑल द बेस्ट 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट, दो दो किडनी की तैयारी करो।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अगर इस छुट्टी पे कहीं वेकेशन नहीं जा रहे हो तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। यस मस्त मौला गौरव आपके साथ है देवी और सज्जनों, और हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव समर मंथ के लिए लॉन्च किया है, समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस समर 2026 स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स में हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एजुकेशनल एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यस और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की। बच्चे 5th ऑफ जुलाई से लेकर 3rd ऑफ अगस्त के बीच इस समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का हिस्सा बनेंगे और यहां पर सीखेंगे ढेर सारी एजुकेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उनको आने वाले टाइम में भी बहुत काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स और स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, यानी कि इंक्लूसिविटी काफी हाई है और इसी के साथ लर्निंग भी होगी, फन भी होगा, मस्ती भी होगी एंड नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका भी, और पेरेंट्स के लिए बोनस कि मतलब बच्चों से कुछ घंटों के लिए छुटकारा मिलेगा। 9 से 1 इसी एक्टिविटी क्लास में जाएंगे तो मम्मीज अपनी पार्टीज कंटिन्यू कर पाएंगी किट्टी विट्टी वाली, है जी। और इन सब के बीच इतना ही कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे वैसे भी घर में रहकर या तो मोबाइल करते हैं या फिर आपसे कंप्लेन करते हैं, मामा आई एम गेटिंग बोर्ड, मुझे मोबाइल दो ना, तो कम से कम बच्चे कहीं अच्छी जगह इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जल्द अनाउंस होगी तो आपको नजर बनाए रखनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एंड ये जैसे ही खबर आप तक पहुंचेगी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइएगा ताकि आपका बच्चा इस एक्टिविटी कैंप का हिस्सा बन पाए और अपने लिए समर कैंप में कुछ अच्छा सीख पाएगा। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है मिर्ची थॉट।

0: was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
1: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान छिल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
0: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स ऑल बॉलीवुड बोल डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड. Cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.

गई है, हो गई है सबकी छुट्टियों की अपनी अपनी प्लानिंग हो गई है। लेकिन उनका क्या, जो अभी अभी घर से लौटे हैं मेरे जैसे लोग, हम अब छुट्टी की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम कतर में ही रह के असली हॉलीडे वाली फीलिंग लेंगे यार। हाला समर का इतना बड़ा स्पेशल प्रोग्राम हमारा विजिट कतर लेकर आया। इन सब के बीच कतर के अलग अलग अथॉरिटीज यहाँ पर लॉन्च करने वाली है समर प्रोग्राम, तो ऐसे में हमारे और आपके लिए मौका है कि हम कतर में ही रह के बहुत सारी चीजों को फन मस्ती धमाल करें। एंड आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जहाँ एक तरफ समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स बनाए, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कतरी बच्चों के लिए एक समर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। इन सब के बीच आने वाले टाइम में इस तरह के अनाउंसमेंट और सुनने को मिलेगी। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, बच्चों के लिए स्पोर्टिंग समर कैंप, सब कुछ होगा। बस आपको कान और दिमाग दोनों खुला रखना है कि आपके बच्चे के लिए जो बेस्ट हो आप उसे उस कैंप में जरूर ले जाएं, ताकि उससे समर में वेकेशन के टाइम पर वो बोर होने वाली फीलिंग ना आए। क्योंकि ना बच्चों का आजकल बड़ा सिंपल आइडिया हो गया है, मैं मम्मी से कहूंगा मैं बोर हो रहा हूं, मुझे मोबाइल मिल जाएगा। इनको ना 7 इंच से बाहर निकालकर 70 यार्ड्स वाले ग्राउंड तक भेजना है, बस ये टारगेट रखिए। इस उम्मीद में कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, मस्त बोलो गौरव लेगा अलविदा। जो जा रहे हैं अपने अपने यहाँ वेकेशन मनाने, उनको भी ऑल दी बेस्ट, एंजॉय कीजिएगा अपना वेकेशन और टाइम पर लौट आइएगा। बच्चों की पढ़ाई का मामला भी रहता है, याद रखिएगा। मिर्ची इट्स ऑल टर्न बाय अभी भी मस्त सलाम। Sheesh.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और उर्दू अदब में ना एक्चुअली कई सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में बहुत बार जो प्रियतम होता है, जो प्रिय होता है, वही ईश्वर होता है। हाँ, कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे उर्दू में तो प्यार की बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो प्यार में प्रिय कह रहा है शायर या फिर प्रिय कह रही है शायरा, वो प्रिय जो है वो ईश्वर भी हो सकता है। अब आप शमीम अब्बास का ये शेर देखें, कहते हैं कि कभी मैं कदा कभी बुत कदा कभी काबा तो कभी खानकाह, कभी मैं कदा कभी बुत कदा कभी काबा तो कभी खानकाह, ये तेरी तलब का जुनून था मुझे कब किसी से लगाव था। आए हाय हाय हाय हाय, और ये तलब किसकी है यार? ये तलब ही तो उसकी है जो वो जो रोशनी है सफेद, है ना, जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है, उसी की तो तलब है। कभी मैं कदा कभी बुत कदा कभी काबा तो कभी खानकाह, ये तेरी तलब का जुनून था मुझे कब किसी से लगाव था। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, वेलकम टू द शो, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: बेटा, आप घर आ जाओ। मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से। आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, देख आ जा, आ जाओ, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो
3: बेटा।
2: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया। हेलो बेटे, क्या हो गया?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
2: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटे नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटे। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: हेलो बेटे, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं हूं मैं। अगर आप तू आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आ जाए बेटे।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्लाई जा रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
0: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर कफील आजर अमरोहवी साहब से। मुंबई में इनका जन्म हुआ और फिल्म गीतकार भी रहे। इनकी नज्म बड़ी फेमस है, आपने पक्का सुनी होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत जी की आवाज ने उसे फेमस किया है ना। और कफील आजर अमरोहवी साहब, मतलब जितनी बात करी जाए इनके बारे में उतनी कम, लेकिन इनके कुछ शेर आपको मैं सुनाऊं। कि पहला तो इनका शेर ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है, कहते हैं कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है, एक एक बात में सच्चाई है उसकी लेकिन अपने वादों से मुकर जाने को जी चाहता है। कफील आजर अमरोहवी साहब से आज मैंने आपको रूबरू कराया, इनको और पढ़े एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आप कैदाशी है आपके साथ। और दोस्त ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई राइटर आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, क्योंकि राइटर हो गया आर्टिस्ट हो गया कोई भी इंसान जो आर्ट प्रैक्टिस करता है वो आप ही के फीचर्स आप ही को ऐसे बता देगा ना कि आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसीलिए हर कोई राइटर्स या फिर यू नो म्यूजिशियंस इन सब के साथ प्यार में पढ़ना चाहता है, उनकी म्यूज बनना चाहता है। कलीम आजिज साहब का शेर देखें, कहते हैं कि इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको। इतना प्यारा शेर है ना ये, इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे, बरहम मतलब बिखरे हुए। इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे। हाँ, कौन कह रहा है कि बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लगते तुम्हारे। इधर आओ जरा लिख के बताता हूँ अभी एक गजल, फ्लैट हो जाएंगे सबके सब, है नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। और प्यार तो दोस्त देखने वाले की आंख में होता है कि नहीं। You know what I say? It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। तो एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
6: Hi.
5: How are you feeling right now?
6: The josh is high. I am excited a lot.
5: How's the feeling?
6: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपके लिए और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी, उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें रंगरेज एक लफ्ज है जिसका बड़ा खूबसूरती
2: महफिल पे अनप्लग्ड
1: कि आप कताशी नजर करे आज कताशी अनप्लग्ड आपके लिए और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी, उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

छोटे होते ना मैंने टीवी पे एक फिल्म देखी और उस फिल्म के हीरोज देख के एक्चुअली गाना पर्टिकुलरली देखा, उसमें जो दो हीरोज थे उनको देख के मैंने ऐसे बोला, ये कैसे हीरोज हैं यार, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये दो हीरोज थे दीपक पराशर और राज बब्बर। भाई देखिए उस टाइम पे हम आमिर खान, सलमान खान ऐसे लोगों को देखते थे, तो इनके कंपैरिजन में ऐसे लुक्स को कंपेयर करते थे ना। वो तो बाद में बड़े हो गए समझ में आया कि फिल्मों में काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको टैलेंटेड भी होना चाहिए। एंड राज बब्बर साहब स्पेशली इन दैट सॉन्ग, वो पार्टी सॉन्ग होता है उसमें, वो ऐसे मुंह सा बना के रहते हैं बिकॉज अपेरेंटली जो हीरोइन होती है वो उनसे ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर रही है। तो राज बब्बर साहब ऐसे हैरान परेशान, दोनों हाथ उन्होंने ऐसे पीछे बांधे हुए हैं। खैर मुझे आज भी याद है वो गाना कौन सा है, तो वो गाना सुनते हैं और सुनेंगे राज बब्बर साहब की फिल्मी जर्नी आज शो पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बहुत से एक्टर्स गुरुदत्त साहब, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन साहब इनकी फिल्में देख के फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर हुए, लेकिन राज बब्बर साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। राज बब्बर साहब की फिल्मों में आने की फर्स्ट इंस्पिरेशन थी दारा सिंह जी की फिल्में। एक इंटरव्यू में राज बब्बर जी ने शेयर किया था, सुनिए।
1: कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद जो दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी जिंदगी के अंदर दो फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया।
0: चलिए इसी बात पे दिलीप कुमार जी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi
1: Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: आपको पता है राज बब्बर साहब और शाहरुख खान का क्या कनेक्शन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। वो ये कि 1973 से 75 तक जब राज बब्बर साहब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिल्मी पढ़ाई कर रहे थे, तब वहाँ पे छोटे से शाहरुख खान काफी आते जाते थे। इस बारे में शाहरुख ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हाँ, मेरे फादर जो थे बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे। और मैं 8-9 साल का था और सारा दिन बैठ के मैंने एक्टर्स को देखता रहता था। राज बब्बर साहब तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से, गोद में घूमता था मैं उनकी। मैं बता सकता हूँ, अभी वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं बताता हूँ। तब हम उस प्ले में सॉरी किसिंग सीन था, वो बड़ा रियल लाइफ प्लेस हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, अंकल अंकल आप सच में किस करते हो इनको? तो कहते बेटा जाके आंटी से पूछ लो। तो उन्होंने मुझे काफी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे बदमाशी सिखाई, लेकिन बहुत प्यार किया मुझको राज बब्बर साहब।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात पे हम दिल को छूने वाला ये होठों को छू लो तुम गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Boulder.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
6: Hi.
7: How are you feeling right now?
6: The Josh is high. I am excited a lot.
7: The feeling
6: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: 50%. सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: जया, ये सच है, मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। वो दोनों ही बातें थी, बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ में, एक साथी के साथ में आप काम करें और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत, किसी के साथ उठना बैठना।
0: जी, वैसे इनकी दोस्ती की शुरुआत नोकझोंक से हुई थी। पहली बार ये मिले थे 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर। मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जींस पर ऑन मिर्ची। हाँ।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: सर, मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
2: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
3: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मिड और लेट 70s में ऐसा बहुत बार हुआ कि लक और शोहरत पाने का चांस राज बब्बर साहब के ऐसे साइड में से गुजर गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उनको रोल मिलते मिलते रह गया, या उनको साइन भी कर लिया गया तो बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली उनको पहचान मिली 1980 की बीआर चोपड़ा की इंसाफ का तराजू फिल्म से, जिसमें उनका रोल ना उफ इतना नेगेटिव था, कोई एक्टर ये रोल करने को तैयार नहीं था। इस बारे में सुनिए राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल किया करते थे कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस करेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूंगा।
0: और ये खतरनाक नेगेटिव रोल वाली फिल्म देखने जब ये अपनी मम्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ थिएटर में गए तब क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो मिस्टर अनिल।
1: हाँ जी
2: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
1: तीनों आ गए
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
1: हेलो,
2: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
2: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके।
1: कौन बोल रहे हैं भाई
2: आप? कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
1: क्या तरीका है,
2: क्या तरीका
1: फोन कर रहा है आपने? यार मैंने कोई
2: एप्लीकेशन
1: ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो? लिया हुआ
2: अनिल बंसल आप ही हैं।
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम।
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार, तरीका आप।
3: ओ बच्चे चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने।
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर।
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए।
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया ना?
3: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: छोटे होते ना मुझे राज बब्बर साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि जो भी उनकी फिल्में देखो इतने नेगेटिव रोल कहीं कहीं में होते थे। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो वो पॉपुलर हुए ना वो 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू से पॉपुलर हुए, जिसमें उनका इतना नेगेटिव रोल था। और जब इस फिल्म के प्रीमियर पे वो अपनी फैमिली के साथ गए ना तब क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, फिल्म देखते रहे। उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे, इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था और खासकर औरतें बहुत गालियाँ दे रही थी, तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे कि उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए तो मैंने पाँव छू लिए उसके, तो मैंने जब पाँव छू तो मेरे सिर पे हाथ रखे थे, बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी जो मेरी मेहनत थी, मैं लगा कि मेरी कामयाबी मिल गई, कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ, तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ।
0: क्या ही बात है, मजा आ गया सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: राज बब्बर साहब ने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलते मिलते उनको अर्ली 80s हो गया। इस बीच में उनके पास काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हाथ कुआई मुंह न लगी। बल्कि वो तो प्रकाश मेहरा साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म में कास्ट भी हो गए थे। ये कब हुआ था, क्या सीन था, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: 78 की बात, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। मेरे एक काम को देखकर प्रकाश मेहरा साहब ने बुलाया दिल्ली में मेरा एक, और मुझे उन्होंने 2 फिल्मों के लिए साइन किया। मैंने कहा साहब, मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप मुझे काम दे रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म में काम दे रहे हैं, बहुत बड़ा रोल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ रहने को कोई जगह नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई दोस्त है। तो बोले क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब, अगर आप मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे 1 साल की रहने की जगह दे दी, मुझे देखना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि ओके, कब आना चाहते हैं? मैं सब 1 जनवरी 1979 उन्होंने अपने आदेश का तवन इसका एड्रेस लेकर टिकट भुजवा। पहली बार मुझे हवाई जहाज की टिकट दी थी और मैं हवाई जहाज में बैठा था।
0: भाई बैठ के ये सपनों की नगरी बॉम्बे तो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते से इनके सपने टूट

गए क्योंकि जिस फिल्म की ये बात हो रही थी उसमें इनको हटा के शशि कपूर साहब को साइन कर लिया गया। अमिताभ बच्चन भी थे उस फिल्म में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा, 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपको पता है नमक हलाल फिल्म में जो रोल शशि कपूर साहब ने निभाया था उसकी फर्स्ट चॉइस विनोद खन्ना जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन विनोद खन्ना साहब तब फिल्में छोड़ रहे थे, तब एक नए एक्टर को साइन किया गया, राज बब्बर जी को। लेकिन उनके साथ फिल्म के काफी लोग काम करना नहीं चाहते थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लाया गया, उनके साथ अमिताभ बच्चन काम करना नहीं चाहते थे। तो इस फिल्म में रिप्लेस किए जाने के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: सर मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो छीन के और ले जाता था, लेकिन छीन के नहीं कहूंगा। मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने दो फिल्मों के लिए साइन किया था, एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल साइन किया था। यहाँ से लेके गए थे, मैंने उनसे कहा था भाई मुझे, मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए एक साल के लिए जगह दी। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तो मैं इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया। और बस वो घर वो कमरा था जिसकी वजह से आज मैं बम्बई में अपना घर बना सका।
0: चलिए घर भी बन गया, बाद में करियर भी बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: लेट 70s में जब राज बब्बर साहब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उनको दो बहुत बड़े रोल्स के लिए साइन किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक तो नमक हलाल में जो शशि कपूर साहब का रोल था वो, और दूसरा शक्ति फिल्म में जो अमिताभ बच्चन साहब का रोल था। दोनों रोल्स में उनको रिप्लेस कर दिया गया। शक्ति फिल्म को लेकर उनको काफी दुख हुआ, बिकॉज अपने आइडल दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका तब उनको नहीं मिला। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने दिल्ली में, मैं प्ले करता था, नाटक करता था, यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर अमीर सिप्पी साहब थे, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया बाद में, पहले साइन हो गया था।
0: वैसे इस फिल्म में अगर वो काम करते तो स्मिता पाटिल जी के ऑपोजिट होते। कोई ना, उसी साल भीगी पल के नाम की एक फिल्म में उनके ऑपोजिट हो गए। चलिए, जिस चीज में होना होता है वो ऐसे नहीं तो वैसे करके हो ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: हाथ को आया मुंह न लगा।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत हुआ ऐसा राज बब्बर जी के साथ भी जब वो लेट 70s में अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भाई 1975 में NSD से पास हुए, फिर 1977 में एक फिल्मों वाला टैलेंट शो भी जीता। उनके थिएटर शोज देखकर उनको बहुत सारी फिल्मों में लेने की बात हुई, लेकिन किसी फिल्म से उनको बिना बोले निकाल दिया गया, किसी फिल्म से बोल के निकाल दिया गया। इनफैक्ट एक फिल्म में तो उनको एक बहुत ही वियर्ड वजह से निकाला जाने वाला था, लेकिन थैंक्स टू फिल्म की हीरोइन उन्होंने उस फिल्म में काम किया। वो कौन सी फिल्म थी, इस बारे में राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिए।
2: यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हो ही चुका था, तो लोग बहुत सारे जानते थे। मोहन सहगल जी डायरेक्टर थे, वो फिल्म बना रहे थे दौलत। उस फिल्म में सारिका के ऑपोजिट एक रोल था, और वो सहगल साहब की वजह से मुझे दौलत फिल्म मिली। शूटिंग हुई, शूटिंग होने के बाद में प्रोड्यूसर को मेरी नाक अच्छी नहीं लगी कि मेरी नाक बहुत लंबी है। उन्होंने मेरे रोल के लिए विजेंद्र खाटके जी को ले लिया। थैंक्स टू सारिका जी, उन्होंने बोला प्रोड्यूसर को, आपने ले लिया, चलिए शूटिंग कीजिए, क्यों किसी का नुकसान करना। सारिका जी को याद भी नहीं होगा, लेकिन सारिका जी की फिल्म में मैं पहली बार आया था यहाँ मुंबई।
1: वेल, इस फिल्म की शूटिंग लेट 70s में हुई थी, लेकिन ये रिलीज जाके 1982 में हुई थी। और अभी हो रही है एक म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: बूंद बूंद सागर बनता है, कदम कदम एक राह बने।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है, पूरा निबंध लिखना हो तो शुरुआत एक वाक्य से ही होती है ना। और एक वाक्य भी नहीं बोलने को मिला था राज बब्बर साहब को उस फिल्म में जिसकी शूटिंग उन्होंने सबसे पहले की थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
2: मैंने वो फिल्म 500 रुपए में करी थी, फिल्म का नाम था शारदा। वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नजर आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं पहचाना आपने, तो सारिका कहती है वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी।
1: वही लेट 70s की बात है और ये फिल्म फाइनली जाके 1981 में रिलीज हुई थी। तब तक तो राज बब्बर जी पता नहीं कितनी फिल्मों में कितने वाक्य कितने सही सही डायलॉग्स बोल चुके थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
3: अभी अलविदा मत कहो।

Mirchi. पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी डायलॉग डिलीवरी क्या कमाल की है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये है राज बब्बर साहब और इनका एक डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 1983 की मजदूर मूवी का, जिसमें एक इंजीनियर होते हैं और फैक्ट्री की मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सुरेश ओबेरॉय जो मालिक होते हैं वो इनको बुलाते हैं रिपेयर करने के लिए, तो बस ये हथौड़ा मारते हैं। उसके बाद की डायलॉग बाजी सुनिए।
1: क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? 1,000 रुपया। एक हथौड़े का 1,000?
2: जी हाँ।
1: हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए।
0: समझे। वैसे विलन के रोल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारे हैं। इनका एक डायलॉग एक टीवी शो पे इनको बोलने को कहा गया, थोड़े से पॉलिटिशियन मोड में आके इन्होंने डायलॉग बोला, सुनिए।
3: देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हो गया हूँ, आपके कहने से बोल देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग कुत्ते की मौत को भूल जाएंगे।
0: चलिए इसी बात पे मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय, हेलो हाय यहीं पर होगी पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

그 짝을 준다. 그 짝을 준다.

89.6 Mirchi 1. It's hot.